0: 다 도에 그다지 셀루이노 워크게 누가이들라이나
1: 호이타 금바 온통은 누가이크행아시디
0: 아아
1: 아이기 누핑아트나찰라이바 푸드 프로세싱기 타박도 카라 잡카나바 하이드나 비엥다기 론 아마 러우르바니
0: 오오오
1: 라이바 얌나 파리바 와펌디 아이나 러우르바 론 아두기네 루팔락 마리 파우바기 인터레스도 2% 퍼 앤엄 가버멘나 푸톡피도레
0: 히마 감동나 두디야
1: 미니스트리 오브 MSME기 램 파리바 프로그램 아시기 마카다
2: 마닛콘 스테 노델 에이전시 오이바 디렉토렛 오브 트레드 커머셜 인더스트리즈 거버먼트 오브 마니푸르나 임플리멘 toba interest subvention scheme sigi makada udyam registration toraba nupina chalaiba msme singda hariba khudongja ba si hauji hauji piri
1: ngasi mak manak nakpa dic amada chapi duna aku pamarol khandok piu
2: scheme sigi kanawa lobiu
3: agashwani val hausik ayuki pum taret makai tare manipuri da pau tabirasi
4: आकाश बानी इम्फाल आर के गोरानी न पाउ पा जरी आहन बदा मरोई बपाउ मणिपुर की अरिहा पांगम न सीनियर एरोबिक जिम्नास्टिक ता सना के तकमा लोब आहन भारत मचा ओइरे सिक्युरिटी फोर्स न राइजर्स के तोंगा दोन फम देगी ला लोबा मंगा फारे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगस आईआईटी दिल्ली की यंखै त्रेसुब कन्वोकेशन थरमदा सरु यागनी Philippines ki tagete city de pangdo ki bas senior aerobic gymnastic asian championship disani kuntarukta manipur gi ariha pangambam na sanage takma lore arihana senior individual women's event ta pointra ma pandas me ama swino phangdana bhat ki oina gymnastic event ta sanage takma loba hanba sanaroi oire rajyapal ajay kumar bhala mukhyamantri jumnam khemchana ma somak kokthum lu singba singna ariha pangambam na aerobic gymnastic asian championship ta sanage takma lopoda nungai phungdorakli लोक भवन के चेरोल अमन हाई अरिहा इवेंट से पॉइंट त्रामापन दशमिक अमसुनो फंगदुना भारत के इन जुनासिक मसान अहन बोन सना के तकमा लोप गंबनी सानरु एसपु तकबी तंबिरकली कोसिंग अचौब थौदांग याउरी मुख्यमंत्री जुमनाम खेम साना हाई अरिहा माई पालक पासी मणिपुर की सु चाथोक सनिंगाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जोरहाट की सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर मोहनलाल अमसुंग डॉक्टर जतिन कलिताना मुख्यमंत्री जुमनाम खेमसार गरांग बाबूपरादर लेबा सीएम सेक्रेटरीट उनखरे उनबादुदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मियाम द पीरिब कानब सिंह अमसुंग रिसर्च मपांग हेन कखना नि मतांग द वफम कया खनखी मणिपुर सरकार ने सुराइजस्ता साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखत न बा थबक सिंह पैकेट कन हेवी थाजे बसुम हिट कांबोदुदा मुख्यमंत्री ने फोंदोखी मणिपुर पुलिस ने आईने थिंखबलु आरपीएफ पीएलए की मियो एम इम्फाल जिला गिलमलाई पुलिस स्टेशन कोनबा सैजांग अवांगले काइदिगि फारे मांग हाइदोरपदिगि डिटोनेटर अमदि आर्मिंग रिंग यौ बहन ग्रेनेड अमा अमसुंग इनसास राइफल्स के आंगब मैगजीन अमा राइफल हांगब कार्टिजेस अहुमा की मयुमदिगि फंगले हाइदि मणिपुर पुलिस ने थोपा चेरोल अमना हाय थौबाल जिला की खोंगजों पुलिस स्टेशन कोनबा सापम द चथकिबा ऑपरेशन अमद प्रिपा की कादर अमा फारे इम्फाल जिला की मनुष्य खेरगों मखा लेकाय की मणिपुर पुलिस ने सोरे पागीमी एम सुफारे हाई कक्चिंग जिला की सुगनो पुलिस स्टेशन कौनब कौशान ताबी मनि लेकाय आर पी ए पी एल ए की एक्टिव कादर फारे चेरोल मखा तन हाई मणिपुर पुलिस की अपन कांगू अमन मियाम नम सेल खाद चेनबनी है के सी पी पी डब्ल्यू जी की मोयम सिंगम पुलिस स्टेशन कौनब पीसुमथों उनाम लेकाय की फारे अमरोम लिलोंग पुलिस स्टेशन वेहीकल चेक पोस्ट अचट अव चेक तब ग्राम चम कुंथा मंगा रोम की ब्राउन सुगर ने चिंब पोलम पुरब मोयम फारे थासी तंग अहम पाथ्व दुरान कप फुटबॉल मैच पाथोरी कुमलम पार्क स्पोर्ट्स कंप्लेक्स की गाड़ी हुरानब तौरब मोयम मणिपुर पुलिस ने थौबाल जिला की लिलोंग यांग लेकाय फारे फारब मोयन हाईदी हाँ हुरानी है होंडा एक्टिवा लखटपे हाई मखातन सिक्युरीटी अखेम सिंह थोरंग नेशनल हाई कंट्रा तरीता नौमद चंगद पोलम से पुब गाड़ी चंगा कुंतर इम्फाल पुरखरे पोचे पुब गाड़ी सिंह अपन पीदनब हाईवे मफम कयाद सिक्युरीटी फोर्स थमदना सेक्शल थोरंग पाखली वर्ल्ड हेपेटाइटिस कचिंग जिला कचिंग वारी सब लेकाय कम्युनिटी हॉल पांथोखरे नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्षिंग एडवांस वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन कक्षिंग वायरी का पुनः पांथोखि पालन थोड़ा की मरुएव हिरमद लेट्स ब्रेक इट डाउन है सरुक अखं अहि क्याने मियामद हेपेटाइटिस बी करमना संदु ई अमदी मसिंग आथोपगी मतांगदा वफम क्या थमखी tungda mei kuntrada hepatitis B amasung C gi screening su pangthoki nisagi polem sing nepi chaitheng amadi nisashine da samasam sim ne pandam da nom yoiba awareness program ma sandel jila gi japho bazar da leiba social welfare and community development ge research center da pangthokre National Legal Services Authority ki for a drug free India scheme nisken kunma gi makada pangthoki ba program da hiram di drug awareness and wellness navigation highway shini thramada drug kamai lena ba ayin ge wafam sing drug sin da ba myo emasu ma ki imu munung da tengbang piba drug lecture ba myo sing karamna laing jatha gada gi amadi ma khoi ba moksa gi punchida karamna pura kada gi habi matang da akang ai sing na wangang ki Arunachal Pradesh ke Longding jila ki sukhau track the security force and intelligence based operation pangthokraba matung united liberation prano awam indikenten gi kokthong ba kadar mari assam rifles khulai konan sangjara kre lalobu singa tuna security force ka matam sanwari chanu lalo matung da khulai thadun wari lor pani ministry of defense manipur defense nagaland and southern arunachal pradesh ki pro na thokpa cherol ami matung ina kone sangjara ko matam da nongui mari yauna khusuk khulai ke aloine rakhi haidi paugi marak than atenba break ama
5: miyam da khangan jaba regional institute of medical sciences rims imphal da ningthau ka ba khuding gi nungthilpung ani da gi ahum makai fauba rare disease and genetics opd famba hozare jinda soiba leibadi gi horak pa leina sing pokpa da gi shoirak pa mapung marai farak pa da thintha ba natraga imung manung gi shuron da launa ba leina sing lei haina chingna ba singbu khangdok pa gyan tamina ba amadi taufam thok pa thoram sing gi damak miyam da lakpina ba khangan jeri makha ta ba kupamarol gi damak rare disease and genetics opd second floor new opd block RIMS Imphal da lakpina ba ning sing jari
4: tabi riba pawasi akas bani imphal da gini pradhan mantri narendra modi ranga si iit delhi gi ankai tere chuba convocation tharom da saru yagani tharomasi da phd scholar samanga amir putre jaun undergraduate amasung postgraduate mahiroi lising ahum henbeda makoi makoi gi degree certificate sing khusi nagani pradhan mantri na video conference ki khutang da iit delhi gi sonipat campus da institute asna sajaba param pragya ai super computing facility su hangdo kani bharat amasung bhutan ani na lebak ani found cheli ba tutorial ski matang da ingmang pine na bagi awang thaki mifam mangarang new delhi da pangthokre mifam adu kendra gi jal shakti mantri cr patil ama sambutan gi energy and natural resources mantri leon pojem sharing anina lu singki nakal animang na hauji laibak aniki marakta ising jena bagi lairba yana se sing hane yeng sinki ama sung isau thorok pada mateng pangna ba yauna hydrological data sing amaga amaga pitok pasin tawna na bagi matang da khanaki mipham aduna bhutan da bara sarkari senthang makha da paikat liba una chanchu one hydroelectric project sengo sakali besing yingsin ki ngasi phongwa pause sing maroi pausing da ma haujik kheti mayum biros leire biros
6: thagachari gorani social welfare loisang da phangal liba kana basing asi cha da marifu taradi national scheme ni manipur lenga ki oinadi pension piba haure haiba director abdul hakim gi wafam amasung kaithil degi miyamna leiraga chanariba manamasing amasung haira singda hu chenba yawrabra hangnarakle haiba pauna huelan paugi ahan lamai da phongli rajigi top top masak amasung lamkanbana sarkar gi khwaidegi maru oiba thaudani haiba mukhyamantri yumnam khemchan gi wafam amadi haimang amasung kanglayin yawna tongan tongan ba pothok tarukta rajya sarkar na gi tech launa ba honari haiba pauna sangai express english edition gi ahan lamai da phongli hemlum yokatpana tung koigada ba lambi chembagi tangai fadaba lai haiba rajyapal gi wafam amasung youth affairs and sports directorate so lon kre district office sing su lon ba haukre haiba pauna sangai express manipuri edition gi ahan ba lamai da phongli mukhyamantri yumnam khemchana land service portal amasung mobile app hodokhi bagi pau amadi kendra sarkar na hana gi mukhyamantri nongthombam biren gi audio tape adu sentence hajan bani haina supreme court ta phongdokhi bagi pauna people's chronicle gi ahan ba lamai da phongli NIT hongdokani haiba sigi aronba agenda kari leibage haiba congress luchingba akram ibo bigi wafam amasung organic farming amasung value chain gi matangda policy semduna thabak paikali haiba horticulture and soil conservation gi director gi wafamna pognafam gi ahanba lamai da phongli chaukhatpa khunai amagi damak handloom sector yokhatpa mathautai haiba governor gi wafamna sanaleba pauche gi anishoba headline oiri pau asi manipur mail dasu ahanba headline tauri senapati jila da ningtam numit ki mangoi na mask cleanliness drive chathakre DLO singda bharat ki ningtam firal yenthokre haiba pauna senapati da phongba hills hornbill express ki ahanba airline oiri tamenglong da tamenglong college da welcoming new minds inspiring right future haiba hiram da pangthokiba freshers day ki pauna gan female amasung tamenglong times ki ahanba airline oiri gorani
4: thagachari biros haujik aroiba da maru eba pau amuhana Manipuri Ariha Pangambamna, CNA Aerobic Gymnastic, the Sanagatakma Loba, Ahan Mabarit Maza Oide. Security Force Narizer Sigi, Tungan Tungan Mapam de Gila Loba Manga Fare, Amasung, Pradhan Metinandra Mudinangasi IIT Deligi, and Kateri Chubakan Vocation Thoromda, Saru Yagani, Paulo Jerry.

मरुप की मरुप फिल्म असे दगे पुष्पा रानी ने सकपा योगांडी ने सेरिंगबा गोपी ने सेरांगबे सेखन बिरकबा एसएमएस अमामुक लोकचरे इसे इसे बो ताबी निगे है दुना एसएमएस ताबी रखली बा मियोइना गरी दगी थियाम चांदनी यमदी थंगमई बंदगी और मिला अरुम गिशे खुदोलम जरे तामिनसी

0: अमुका है जगे एच टोल फ्री नंबर 1097
1: खेचमयुम बिसेश्वरी देवी ने सकबा रतन कुमार लोटुंग बमने सेरिंग बा मतमिशे खन बिरकबा एसएमएस अममुक लोगो चडे मतमिशे इसबु खुदाना ताबिनिंग है दुना खन बिरकलीबा मियुइना थांगमय बन सिनाम ने गाइदगी सिनाम नाउन किशोर कुमनमदि एस मयामबा खुमन थांगमय बन युम नाम ने गाइदगी उशम इबो चौबा मदि लांगथबाल फुरा मखोंदगी गोटिमयुम सनायमा खुरोल तमजरी नुंगाइना तामिनसी।

लता मंगेशकर मदे लाइश्रम मेमा अनि पुन सकमिन बा इसाई ममु क्लोमिन से नुंग शिबा मागे इथक इरेदा इराग नरे ऐगी पुन से नुंग शिगी तेना पालवदा

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ताबिरिबा से मेघहस चामा हम दस्मिक मंगारे संदोक्चरिबा आकाशवाणी फल के एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउसिक लांधोक्चरी की गीत खुरोल के आहान बदा ताबिरसे अभिजीत श्रीवास्तव बनसकपा गीतमा

0: ताबीरी बड़ो बजा वाम तंग योगी
1: कनी ओइरा बनो स्कूल सुती थारक पसिदा युम दह लगे तौ बनी
0: श्रीमती के मलया हेड मिस्ट्रेस इबेमचा जूनियर हाई स्कूल हरिसिबु कना ओइरा बनो बजा
1: आइ इसा मगनी करी हाइबी गदबा
0: अस याम नुवाइ जरे आइ खुनिसिबु पुरीबा पोस्टमैन चिची चिमते लक्षण बियुसि
1: ओ आइ जिरा यानी पिबिरम
0: आइ मु चचरगे बजा
1: अहोय करी की ऑर्डर नुसिना पोस्टिंग की ऑर्डर इमीडिएट इफेक्ट तीब कुदक द सट कदर हारिसिबो मपम सिद लाग बसही अहोम सु पाद्री अंगम बसिंग सिना तौरीसे मम क्रेदको युम यौरग पारु बाइदुनी
2: ए ओजा करी तौरगे सुखथिंग इसिबो
1: हैमा ता तो मालो कयाम कुइरे आइ मोरा पुथोरके
2: यारे यारे आइ सुनुंग मतला केनिंग बा तबक सिनंगम दे नसी दे हेक्ट नायरोगे हाइदोन लाबनि
1: से सिदा फंबी
2: यारे यारे
1: करी लैगे
2: करी सु लैते दा इबुंग न संगो महान मसुमनि हाइदोना नंगी संगोम परेबनि से से से
1: असुक याम न बुबी रे सिबु करी गिनो तादा
2: हेरा नुंग तिन सुमबदि एकुइ गि चान न बनि अदुना नंगी सरुक तमै बनि
1: अदुदि सागा थखिसि ऐसा लोनगे
2: नंगी सादो इबुंग न पोरक प संगोम दुना सेमो हाउन थक्सि
1: अहोय दादा
2: ए ngai khon he
1: kai hai ge dada
2: nang bu ai khui khun gi mi bu yam na ma le ge ne ha na ga ma na dre
1: ai na su ma na bu hot na ri ba ni
2: he wa ja na bu ai khui khun gi mi wo ina pun si gi le ni bu hai ra ba di sen nu pi chak na chaung na lu hong gi hai ri ba ni
1: dada khun si tha dok tu na amuk chat ka ni khan ba da
2: ai yaro yaro yaro sat pa yaro khul gi angang sing che लाइक तम बचलु यारम द्रबनी नोमाइजिंग फाव बकागे हायरबनी होजिकती नंग हेक लाकपदगी महौशागी खुंगंगदो न ट्रेन हिमालया
1: दादा
2: सौखत पगी मम्मी एमदी लाको मालिने
1: आइबो नु सीबी दुना तापी बसे ओ थोक न नुगाइ जक्रे
2: हे फागी नती नै हाक ले पुंग फम बदसु नंगी वादनी गांगनरी बसे हानाय खोइन नंगोन द खलमबा उरमबा अदु ओ थोक न खेनरमले नंगी जादो अदुम सेमु इबुं वारी शारके को
1: यानी अदुम हाइबी ओता दा
2: ए ngai khu nang bu yung kai ga palaroi hairi brane e kai unu ibung da sieng na khumu
1: ta to ma lo ai bu lai sha bi man brane
2: hi ma si ngang chi uni phagi tong nu ne ai na nu si de na hangim ni मपुक मपाउ तपा आइखुइ गि खुंगंग सिद सुयाम न लेबनिदा आ पंगहाइ सुहाइबनि इम्फान गबुदि एकदा आइदगी मानव यागदगे
1: नुपा नुपी अनिगि नुसिना बगि मरिया दु लैत्रबता लमन कैदौरुनि तादा मतम सिद लैरम खिगत्रा असेंग बनुसि बकाइदो कलक चक्रेदा पुनसिसे करम न तमलिबनो खंगते दतादा
2: हा नंग न मफम मसिद आया मम मतम द लेबदो अदुना आइखोय बु ज्ञान ताहलिबसे मसिन मपेले अदुना नंगसे सुंगचा चले निंगजबनि आइखोयदि
1: तातो मालो आइ चाहिरके चायारनि
2: ओनथोंग ननुंग सिख्रेदा मसिल लोमखाओ
1: दादा सासिदे लैरे
2: आ कदाय कदाय
1: नसिदि आइ वाम

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो तरह नुक चली कनावे पीर बनो
1: आई नी गोम तोम लाओ गे जिनु मई का पम तनु जा
0: तनुजा है बीबा
1: तनु जा है बा
0: तराम तराम नुक चली करी करम वाफम सिंह पुखर पी गनी तक पियो
1: ओ सर आई ने हाइजनिंग बदी बको कोई की गाड़ी अकोई की लंबी जे कोई की गाड़ी अंकन सत पर ओई गे बनु हम थों जाओ की लंबी जे अदुम चट्टी चटले दुगा याम ने सत तो जे दुना गाड़ी कन थौबी जनु अदगी कोई की तैकाई जानी छासा थलला गा मपान पान छो लंबी दम मपान पान थोजन दी तो बी जनु निशासा बने खंजरे बको सा अदो मोय ने गाड़ी द मोय हम नम दले अनी मने तोंग लै रे मना आ वान तोक छलग लै रे दो कोई ना आंग ट्यूशन थिन चपदा कोई चटदा जु की की जे अदुगा
0: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ.
0: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔ

गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम ताबिरी अदम थोरम ताबिरी बसी एफ एम मेगा हर्षा मोहन दशमिक मंगा दस दुख चरीब आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चेनली हौजिक गेट मला थोरम की दमक अखुगे अनाउंसर निंथो खोंगजम रंजना दा सिनचरी

नमस्कार खुरमजरी, मैं निंगथो खोंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही रूप और आज हम लेकर आए हैं एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के कुछ गाने। तो सुनिए इस पहले गीत को और पहचानिए हम किस गायक के बारे में बात करेंगे और आपको उनके गीत सुनाएंगे।

दोस्तों आपने पहचान लिया होगा हम किस गायक के बारे में आज बात करेंगे और आपको गीत सुनाएंगे। जी हाँ, कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें प्यार से सब केके के नाम से जानते हैं, उनके कुछ गीत आप इस 30 मिनट के कार्यक्रम में सुनेंगे। पल एल्बम का गीत था जो अभी आपने सुना। यह एल्बम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पार्श्व गायक के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत।

दोस्तों, केके की आवाज़ और उनके गीतों के बारे में क्या ही बात करें। उन्होंने सिर्फ अपनी रूहानी आवाज़ और सादगी से करोड़ों दिलों पर राज किया है। अभी आपने सुना वो लम्हे फिल्म का एक गीत। अगला गीत है फिल्म जन्नत से।

अभी आपने सुना तुम मिले फिल्म का गीत। दोस्तों के अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें इन गीतों के जरिए हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आखिरी गीत पेश है फिल्म बजरंगी भाईजान से।

0: वेस्टर्न म्यूजिक तबिरे थरम से दुक्तुन तहन जरिबे सी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी हौजिक नुंथु लिपुंग अहम तारे मणिपुरी द पाउ तबिरे सी
1: आकाशवाणी इम्फाल खेत्रिम बयम चित्रभानु न पाउ पाजिरी मुख्यमंत्री युमनांग खेमचानंगा सी कांपोपी जिला के एडीसी ऑफिसर थुंगलपद मफम मदुगी मियामना हराव तारामना ओखरे मदुग ममांग श्री खेमचाना कांपोपी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डायलिसिस यूनिट अमसुंग ब्लड स्टोरेज यूनिट हांगदोखी मुख्यमंत्री ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रक अमसुंग वेस्ट डिस्पोजल बिन सिंग सु खुंजा सिंह खुशी नखी मुख्यमंत्री की खोंचप मनुंद सरकार की तोान तोान स्कीम सिंह खुदचाब सिंह आई डी पी बेनीफिशरी सिंह एंथोखी थोरम वांगद मुख्यमंत्री ने हाई राज्य से चौखट हन खुंदाब तोान तोब कालूसी मरक्तनासी जानना लेमीब की तंगाइफद ले मुख्यमंत्री की खोचित पादम
2: मसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान सिंह ने कांपोपी जिला मनोंद अहान डिस्ट्रिक्ट डायलिसिस यूनिट डिस्ट्रिक्ट ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी संगखरे लोना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेशेंट्स स्टाफ सिंग इंटरेक्शन प्रोग्राम्स लौखली मखाता ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेहीकल्स अहम इनॉगरेट तब प्लास्टिक कलेक्शन बैंक मंगासी जिला मनोंद आई डी पी सिंग beneficiaries kaya su yentoki thoram aduda kapopi assembly constituency mln mta kipgen saitu assembly constituency mla hokolat kipgen outgoing dc mahesh chaudhary amason jila manung da cso kaya nasu saru yake
3: akaswani imphal gi paugi damak kapopi jila de gi ba gunne singh set
1: राज्य की हम विभाग ने सिंधुना मणिपुर मिसिंग हेंगलप की मौ मतो हैबसी चतरप खनब की मीफम सेमिनार की चम की टेक्निकल सेशन द वे फॉरवर्ड फॉर सेंसस ऑपरेशन लिंग तरह खनेनेब अनिशुब टेक्निकल सेशन अपडेटिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी 1951 ऑफ मणिपुर हैरम पुथोक्तुना खनकी मीफम रिकमेंडेशन वरे कोयासु लौगनी चोराचानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सिंधु नंगसी आयु रन फॉर यूनिटी थोरम पांगतोखरे किलोमीटर तरह सांगब लमजे अदु तुइबों फॉरेस्ट गेट ट्रैफिक पॉइंट की जिला से डिप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने लमथा की लमजेल अदु पीस ग्राउंड तुइबों लुशिनखे मदुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सेंट्रल फोर्स की पर्सनल चनी यांखई रोम सरुक याखी लमजेल मकों हतंग तारब मियोसिंग मना मथुम पीदुना पुनिंग थोकरकी थोरम जिला से एस पी श्री गौरव दोग्रासु सरुक याखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी आई आई टी दिल्ली की महिरोब अफब थबक तौनबीदम मसाब वरेंसिंग लौनब होनगदी वाफम श्री मोदी नंगसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी दिल्ली की

0: आवरम संदक तो न तहन जरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल नी हाउजिक पुंफा मसीद ताबी रसी खुंगंग द नोमा थोर मसीद चनम संत्रो खुंगंग की मपाओ अनिशु बसरु थोरम बुतोपा नोंथोंग बम रोमा
1: हौजिक लांथोक सेरी खुंगंग द नोंगमा थौरम असी की तारामा थोई सुब तांकक नसी की तांकक त ताबिरसी चानम संद्रो खुंगंग की मापाउ अनि सुब तांकक थौरम पुथोकपी नोंगथोंबम रोमा पुथोकप द तेंगबांग बसिंग यमनाम मेमा लोयथोंबम रंजना एमएम सनायाय इरेंगबम अजित कुमार अमदी मेरिना ओइनाम
2: चौखलकपगी मतुंग इन्ना हौजिकी मतमदा मियोय कुदिंगमक हिरम कुदिंगदा हयिसिंगबगी तंगाई फदाबा लाकले मेचम मियोय अमा ओइना करिगुमबा मतमदा अवाबा खुदोंथिबा थौदोक कया थोकबा मतमदा करमबा मफमदा चत्तुना मतौ करमना आयनगी मतेंग मेचम मियामदा फंगहनगदगे हाइबगी मतांगदा चनम संद्रोक लीगल एड क्लिनिकी पेरा लीगल वॉलंटियर इरेंगबम प्रियो कुमार
3: हौजिक पाउबदा लीगल एड क्लिनिक असिना लमदम असिदा करी करी खुदोंचाबसिंदी बिबिक्रे
4: अखोगी लीगल एड क्लिनिक असिदा अखोगी खुंगंगी मियोयसिंगना खंगजदबा उजदबा हिजदबा हाइतारे आइनगी लमदा मतेंग लौनुनिङाइगी होनारको मतमदा इम्फाल इस एरियागी ओइना अखोगी लीगल एड क्लिनिक असिना मरुओइना स्कूल अखोगी छात्रसिंग जुमिनाइनगी थाकता लैरिबा छात्रसिंगदा अखोगी अवेयरनेस प्रोग्राम क्या आमा ममांगदगी हौना दुम पीरगसु लाइ हुजिकसु दुम पीनानबा थौरांग मखा जथरगसु लैरि खुंगंगी मियोयसिंगदा अखोइना कानाबा पीगिबासिंगगी मरुओइना पंजरपको मतमदा अखोगी हाक्सेनगी कार्ड छाबा फ्री लीगल एड अखोइ सेल अमत तिंगदना अखोइना मतेंग पांगबिबा गाइड तौबिबा खुदकता सदली अखोइना नेशनल डिजास्टर गुंबा मयौ लांगपोकनचिंगबा थोलपो मतमदा अखोइना अनकपो पुलिस स्टेशनदा पाउ पीबिबा अमदि आइनगी अखोइगी लौदौबा मतेंगसिंगदो अखोइना गाइड तौबिदुना कोटता पुबिबा पुलिस स्टेशनदा पुबिबा सुमाइ तौदना अखोइना मि मियामगी मतेंग पांगगा ngasi phawba लीगल एड क्लिनिक असिना पांगदुना लाइ इम्फाल इस एरिया खुदिंगमक्त हाइतारे
3: दो मखा ताना अखोइना खंगजनिंगबसे लमदम असिदैदा हौजिक थोकलिबा अखोइना थेंनारिबा अखोइगी युम युम द खंगदे अवा अना तारबा म्याम याम वान खांगिबजिंगसिदैदा अखोइना अखोइ लीगल एड क्लिनिक की मतिंगसि कराइ फौ यौने लौब याबगे हाइबदुसु खर थंबियु
4: ngasi phawba द अहानबा एड लीगल एड क्लिनिक ता लाकपदगी हौना केसुगी मतुंगिना खोइ लुपा मंगा पिबा लुपा अनि पिबा खोइ इस्लाम लै आइन योइबा अदुगुमजिं दुदि मसाना पुथोकसै अदुदुगा महांगना केसम थेंगनबा तारे अवाब मतारे मोंदा मीना नमजानम थेक तौबिरे हाइबदुगी माना चनिङि बजे लीगल एड क्लिनिक की मतेंगना हाई कोर्ट योबोसे सेल अमत तिंगदना लि मणिपुर से लीगल सर्विस ना मतेंग पिबा ngami हाइब वाफम जिमजु आइ थामजगे
3: अखोइना मतेंग असि लौगे हाइरगदि अखोइना लीगल एड क्लिनिक चनम संदोक्सिना चनम संदोक्सि खक्तगी ओइबिगेदरब्रा नत्रगना अकोइबा लैबा लमजिंगजि अखोइना मासिदगि सुलागा मतेंग लौबय आबगे खुदोंसाबगादि लैबिब्रा
4: लै मतेंग लौबय आइ इम्फाल इसकि जगादे लैरिबा खुंगंगसिंग हुजुजिक डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमकि लीगल एड क्लिनिक कया आमा हांगतोखरे अदुगा चनम संदोकता हांगतुइबा लीगल एड क्लिनिक असि सरांगदिन एरिया इम्फाल इसकि नकनारिबा खुंगंगजिंगना खय आइनगि मतेंग लौगे हाइतारगादि चनम संद्रोक लीगल एड क्लिनिक ते लाकपिदुना पनथुंग यौद्रिभावबा अखोइना गाइड पिबिबा दुनि हुजुजिक तौरिबसे
3: लीगल एड क्लिनिक असिना चौखत थौरांगी लमद ओइरगासु अखोइगी अवाब तारब मियोय अमद ओइरगासु अखोइना तौनिंग ब थबक क्या लैरगासु अदुगि मतांगसु खर थंबियो
4: हुजिकति मतेंग पांगबिनाबसु यामनासु लैरे मतेंग पांगबिनाबा लैतबसिंगदो मखोइना पामिबदो कराइदा वाकत लगदि हेन फगनि हाइब थसेंगना मा खोइगी लीगल एड क्लिनिक सिदा सांगपदो अखोइना हाथेंगनाना दुम मतेंग जु पांगजरनि
1: खुनाइ अमा चौखदबा खोटदबादा तुंगी युम्बी ओइरकदोरिबा पिकलिबा अंगांगसिंग असिबो ताइबंग फाउरकत्रिङैदगी हौना मसामाउ फबा अंगांग ओइना ताइबंग फाउरकनाबा अमदि तिनजंग काइजंगदबा खुनाइ अमा ओइहन्नाबा खोटदबादा लमदमसिगी आंगनवादी वाकरसिंग असिनासु अजौबो थौदां कया लौरि आंगनवादी वाकर अमा ओइना लमदमसिदा थबक थौरम कया तौरकप मतमदा थेंगनरकपा अवानुआई पाउदम फोंदोक पिरिबी चनम संद्रोक अवांग लेकाइदगी आंगनवादी वाकर लाइतोनजम रेनुका अमदी चनम संद्रोक मखा लेकाइगी आंगनवादी वाकर थौनावजम सुशीला
5: आइगी मिंग Tonzambrenuka, Segi Koli, Bazagasa, Sidabini Pesiri, Massing the Camocale, Beauty Pesiri, 30 laser. Ten population, 350 mo, the Malay. Nala Pase Hanam among the tea, Yam La Amequa. I give you a Pesiri, Labour Sang, the Manan, La Amusiti, Latre, Latre Habati, Tahi, a home Karehadi, with school with Hanare, Piscu with Hanetana, Duduna, Hosidi, Tahi, Hungi Makazi, they say, Hom is Moina, Salamdai, Akuidi Punteret, Tagi Hobina, Mosiku is Kungi, Mingi Punteret, Tagi, not Miss Naretana, Adudrang Hakadilla Amaya, Mama Bana. Zaising tau ni, kau ni dengan hak haram betul. Aduh dengan hak lah, mian tu kan hangi ba. Aduh ka, jadi hangi makasi ayam boleh nelay.
6: Aduh ka lah iba angang keras sesia. Aman nilak pasai. Sigi sida dia kemain nelay tak piba gimu orang matok sidi. Isi lagi oina kemain tau.
5: Tak tak pasai lah, oina tak pasai yadre. Moisi hati angang oini bani naku. Karena popi mampir aga, jadi kau ni ABC maye kumbaze. Sini A ni, sini B ni kan, so kau ni sum tak betul. Maye kangen apa? Mana tau.
6: Aduh ka, sidi pasan tekar na, aman season nere ko FM. Aduh tu na angang sengsia. Ma register tau gih hati di mama mampai.
5: Degi ikhuna de adhar sim khomba matam se the irailen he ta pirak pura kamai tho adu gidi problem yam lai beyawe adi yam har arauna pirak payawe kan jerok sa roga pirak payawe degi jima adapi wa basi nam pining da bagwa kari gino noi na kana ba phangdui ni adum ba yam lon beyawe yam ma ba gyan ta da badu ina ai sa ta gi gyan kitang ta ba wat bra ina khanje pene umen da akhoi sarkar na bmby pi re ko hanadi acha khakte da piram me hiti angla di wa kar sing da se pi re aduna ha ba mirol lak pacha pi re adi ani subangang and the pig and the oil got the initial mangang so the man of a handbag, Nirum Baki, handbagangs, parcels, the Nan Simanga Pire, Duga, second sign, new people possess, Sigina, disinterrupted.
7: Tanozum Susila, beneficiaries, 30 in a day, 3 years to get them school. I am on the center of Nina, Quiggy Matam Zigamana, but school car, but I mean, she got not lack was it, Kratile, P. Ibangang, Larictum Tripoqua, a doom, but the Mangang Mangata added my appointed Loyna Matam the Qua, Sana Sana Ragana, ABC, Maya Kanganba, Adobe Matata, Polisigi Pose, Fruit Oil, identification, Oina Tapibado, Adumba, and again, say you in a Rams, Kumba, so people's mind, though, Pizza Peters, a great Kissy, Wina, Samayato is some money. I am a portion taker, Loma Pond, the Peter Vina, Pond people, Madame Dosum, Fonzi, Gandhi Sanzina, Nero Yadab, Mayam, Mayawi, Tabuksuda. I don't know Palagayada, but Mayam, Sina, Hoyda, Aswanda, Gino, Ponya, the Tagalatri Kagino, Kudunsa, Mayam, Labour, other Huina, Dum, Complain, Tose, have a Moydazo, Aba, Habne, Mahabne, Loma, Moygiving, Yam Toreba, Aduna, Ada, Loka, Singum, Yam, Hapson, Manina, Pondako, Huina, Tarponi, Tabuksu, Opposite, Quay, Honorium, Tangsana, the Brana Kaleva, Quim.
2: Isai Nyong Maina, Awaba Matamda, Ngai Haktang Oirabashu, Mioi Kayagi, Tamoi Potahan Bagi Pandamda, Koitum Laba Konjelda, Isai Saktuna, Mioi Kayagi, Tamoi Bupelhaliba, Agasbani Imphal.

ताजगी मंगाल द मैशा फावरबा थाबले लेनमना थमोय कायरबा एलांगबम नेत्रजित की खोंचल द मतमिशे मसतामिनरे हौजु अमुलो बिरसी इसे इसे की सुरद खोंबा सक्साफोन खोंबिदिबा यामबेम इबोहनबी

0: ताबिरी खुमगंग की थौरम अदम ताबिरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की थौरम परेंगी
1: नोंबद अहुम लंग नत्रग अहुम लंग तक गेन खोंग हाम लबा अदु एबत आरग दी अदोंग अंगांग अदु डायरिया हरे बलेना असि नारम द याई डायरिया हरे बलेना असि अंगांग सिंग द नारक तन बगी दमक एकोइन पैकेट पे आबा थबक थरम सिंग दे विटामिन ए सप्लीमेंट सनमदी अफब इसिंग पिथक पिग दबने साक सरम द एमदी तोले चंगलु रब मतुंग द अदोंग खुद सा सपोन मयक सेंग नाम दो पिग दबने अंगांग सिंग द ममागी खमलांग मतम चाना चाना पिथक पिग दबने अमदी मतम चाना इम्युनाइजेशन तो पिग दबने करीगुम्बादोंगे अंगांगदु दारिया हरी बलिना सिनारक पतारबदे ओआरएस मदी जिंक टेबलेट असी मतम चाना फिजा पिथक तो बिगदबने ईसा ईसा गी युमदा ओआरएस सेमगी नियम हौजि पुन खमिनसे आहार बदा अदोमे खुद सा सपोन मय सिंह हम दो पियो अनिसु बदा ओआरएस पाउडर दु तरु तरान पात्र मद हजिन बियो मसी गी मतुंग द अफवे सिंह वाले तरग चांग पात्र दु दहिजिन बिगदबने ओआरएस पाउडर सिनिंग थिजिन तुमद्रि बफाव ओर पियो हाइरिब सिंह सिलोरे बमतुंग अदोमे सेमिरि ब ओआरएस सोलुशन असी सेप ओइबा मफम साब मफम मद थाम्बियो डायरिया नार बंगांग सिंह दा ओआरएस मदि जिंक टेबलेट पिजबगी नियो थानि दगिन तरुख फाबु दले बंगांग सिंह ओइना 20 मिलीग्राम जिंक टेबलेट असि तंखाय एम पिजबियो करिगुमा दोंग अंगांग दुना था तरुख अमदि मसिग मथक तले बा अंगांग ओइर मतारबदि 20 मिलीग्राम जिंक टेबलेट असि पिस एम पिजबियो अमदि हारि बंगांग सिंह असि दा ओआरएस सोलुशन असि मतम चान पिजब पिथक तोबि गदबनि हारि बथबक थरुम सिंह असि निमितारा मारिनि लेपलै तना सथबि गदबनि अदोंगि नुसिरबा अंगांग मसामाउ फन थामलसे डायरिया हरि बलेना असिदगी लापना लहलसे पाउजेंजरी बा चाइल्ड हेल्थ डिवीजन नेशनल हेल्थ मिशन अमदी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर
2: काइदुरा युसिदा याम नाना
3: दासिं खैगा एचआईवी टेस्ट तोरुगे दोबा
2: कैगिना नबानी दे एचआईवी टेस्ट तो दोइदे
3: इबानी लो होमगी अहन मसेन हाइना खरे अदा इबानी एचआईवी टेस्ट तो थोसेना हाइना रमबा
2: नबानी दि याम कुइरे दाइना खंगनारपा अदुगा कैगिनो एचआईवी टेस्ट तो दोइदे नबानी गिसे अमना अमबु याम थाजना दबाय वानिने
3: अदैना तेदा HIV test tok tok tu na HIV lei na traga lei ti na khang to phai ba sa yam na phaba thabak ni masi hakjang phana lei ba amadi akhoi ani gi tumgi pinsi gi damak ni aduna HIV test tok du na isagi HIV status khang to pa hai ba sa routine health check up gi saru amo hela da ba ne
2: aisu

0: ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯛꯌꯦꯜꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯝꯆꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯐꯤꯖꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯁ 103.5 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8:00 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
3: आकाशवाणी इम्फाल निंथोखोंजम सुनी नपाउ पाजरी। राज्य सिद शांति तंगदूलैताब फिबम हंजिल हनेबगी माइकैदे सिंथानिङा एबो खोंथांग अमा ओइना जाति कांगलुप खुदिंबक निंग तमना चतोक ससिन तोबय हनबा नेशनल हाईवे सिंग खुदकतगी हांगदुक लगनी हाइना मुख्यमंत्री युमनाम खेपचान उप मुख्यमंत्री नेमसा किपकेन मसुंग हाउखोलेट किपकेन नसी पुन्ना लाउथोखरे इम्फाल दिमापुर लंबी दा बस सर्विस हौरगनी हाइनासु लाउथोखे कांगपुपी जिला की हेडक्वार्टर्स ता तुंगान तुंगान बा सकुतरांगी प्रोजेक्ट संगारदुना श्री खेमसाना हाय मणिपुर की गमखयसी तुंगान तुंगान बा जाति कांगलुपसिन नाकछेनदुना लेरी तुंगान तुंगान बा कांगलुप की मियोसिन ना कथोकपगलोना राइजी की गमखयसी बु नाकसेली कांगलुप खरेना ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯦꯛꯇ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯅꯕ ꯃꯨꯈ꯭ꯌꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ꯫ 14 CSOs ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯁꯥ ꯗꯤꯂꯤꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ NRC ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ NRC ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ, ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯕꯟꯗꯦ ꯃꯥꯇꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔ ꯘꯔ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏꯊꯦꯜ ꯕꯦꯇꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯅꯦꯝ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯀꯣꯝꯂꯥꯈꯣꯡꯗꯁꯨ ꯍꯔꯘꯔ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛ, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯕꯣꯡꯖꯥꯡ, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯁꯪꯁꯛꯇꯁꯨ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯤꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯔꯦꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯥꯠ ꯈꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯦ ꯗꯤ ꯋꯤꯠ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ, ꯍꯧꯅꯂꯣꯟ ꯆꯠ, ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕ, ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯈꯪꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ MSU ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯄꯧꯔꯥꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯦꯝ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ꯫ MSU ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯩꯅꯁꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯔꯀꯤꯅꯣꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯖꯦꯅꯤꯝ ꯀꯦꯝꯄꯁꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ 13 ꯂꯣꯛꯔꯥꯛꯄꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 40 ꯔꯣꯝ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ India's International Movement to Unite Nations na sindu na tara manga suba annual championship conference haudopogi thoramda RSS ki sarsang chalang Dr. Mohan Bhagavat Nahai amaga amaga wari shana duna yenaba khudimak loishin bahaibasina khwaidigi phabalambi ni yaning da phongdok pana amaga amaga tokhai tanabagi lambi oirakani Mumbai da pangthokba thoramadu da lebak asigi tongan tongan ba sahar chamadagi Sahitara Mangadagi Natra Kunmari Pauba de Leba, Mahiro Lishing Anihin Sarukyaki. Mipamasigi Maruva Pandamdi, Tungilambida, Apaba Luching Bama, Oibangambagi Gunchelhenba, Amaga Amaga Mari Chesil Henneba Wakalon Sing Putokpa. Male Mamasung, Leba Kiba Togdok Sing Nasing Nat Zabsaba Togdang Loguna, Apaba Puram Yat Payauri. Taramatu Shuba, Bricks Culture Ministers Gimipam, Nasi Bhopal de Pangtokre. Baratki BRICS leadership ki makada pangthokpa mipamadu da BRICS lebak singna amaga amaga sanskriti ki mari hena chesilana batengbang na bawapham yauri mipamasida BRICS lebak ki member tara amasung partner lebak ki myoi mari punna lebak tara mari gi myoi sing saruk ya ki myut kangbu sing asina sanskriti amasung creative udyog sing gi lamda hena khubang chakshilana bawapham sing khana ki artist sing da hena kudong chaw phangana bawapham yauna Digital platform se zin adun artist sing miyam gi mangdo putok puta teng bang nanaba wapam sing khanaki pauloi jare.
0: Adom na tharom ta viribasi Akashmani Imphal gi FM sangai channel dagi ni. Hausik pungpham masida radio punungai na ta viriba mayam gi damak puzeregli night melodies thoram nanthok piribasing Maniza Mao Amadi Kaksing Tabam Ritesh Sharma.

10:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ, मैं विकास।

गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गीत पहुंचा आप तक और गाया था इसे भूपेंद्र साहब और लता मंगेशकर ने। बात इसमें थी आशियां की,

और सच कहूं तो आशियां जहां पर हमें सुकून मिलता है, चैन मिलता है, थोड़ी सी मुस्कान मिलती है, थोड़ी सी आंच मिलती है और थोड़ा सा मिलता है धुआं। अगर मैं कहूं आपसे कि घर क्या होता है, तो आप शायद कहें कि चार दीवारी, जहां एक छत हो, एक दरवाजा हो। लेकिन आप एक बार फिर सोचिएगा, क्या वाकई ईंटों और सीमेंट से ही सिर्फ घर बनता है? या घर बनता है एक एहसास से, जिसकी दीवारें होती हैं उसमें बसे रिश्ते, जहां होती है शरारतें, मनाए जाते हैं मिलकर त्योहार, जहां होता है रूठना और मनाना।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। बीते दिनों एक रील पर मेरी नजर पड़ी और जहां एक पोता अपनी परदादी के हाथों को छूकर कहता है कि आपके हाथों में इतनी सारी लकीरें, इतनी सारी लाइनें, इतनी सारी झुरियां हैं। परदादी हंसती हैं और समझाती हैं और समझाइश भरे अंदाज में कहती हैं कि मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा है। बच्चा बड़ी मासूमियत से उस हाथ को पकड़ता है और अपने करीब ले आता है, अपने पास खींच लेता है और ऐसे प्यार से चूम लेता है जैसे वो परदादी उसके प्यार का एहसास हो, प्यार का घर हो, अपनेपन की दीवार हो, जो दीवार अब पुरानी हो चुकी है।

फिल्म का नाम था चरित्रहीन और लता जी की आवाज, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत और आर डी बर्मन साहब का संगीत घड़ी बता रही है कि बस अब आखिरी गीत मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन बात हो रही थी रिश्तों की और मैंने आपसे कहा कि घर उसी रिश्ते की एक कड़ी है जिसके हमें आसपास दीवारें दिखती हैं, रेत और गारा दिखता है, सीमेंट दिखता है, लेकिन घर वो नहीं होता। तो आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, अपने घर पहुंचें या घर में मौजूद होंगे, तो इस बारे में जरूर सोचें कि इमारत में घर नहीं बसता, एहसास में बसता है, रिश्तों की गर्मजोशी में बसता है। गीत जो आपको घर का एहसास कराएं, उन गीतों में घर बसता है। पहाड़ अगर आपको घर का एहसास कराएं तो उसमें घर बसता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे चर्चा के आज हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद निशेत और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: आइए श्रोताओं डालें एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर
0: The benchmark domestic indices rise for the second consecutive week. Sensex and Nifty jumps over 0.5%. Wall Street wraps up week with strong gains, buoyed by macroeconomic data, and UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त सेंसेक्स और निफ्टी में आधे प्रतिशत से अधिक का उछाल आया मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से मिले लाभ साथ वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया और डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी संस्था पीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क यूपीआई लेन देन होगा

0: प्रेम जी जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: जी सारे टीम को मेरा प्रणाम, गुरु जी को भी मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम जी गुरु जी, अच्छा चलिए प्रणाम
1: जी। सर मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी बात हुई थी काफी सीक्रेट लोगों से, सर ये जो हम लोग जहाजे में जो कुछ अटैक वटैक हो जाते हैं
2: जी।
1: तो पहले सर ये युद्ध जोन में आता है जिसको हम लोग रिस्क जोन बोलते थे, हाई रिस्क जोन बोलते थे, कहीं कहीं सोमालिया समथिंग लाइक, लेकिन अब तो सर ये साइमल्टेनियसली हर जगह पर हो रहा है। और सर इंश्योरेंस कंपनियां कहते हैं कि साहब हम इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह फंड नहीं दे, इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, तो सर इसका क्या समाधान है सर? क्या हमारी सरकार इस पर कुछ एक्शन ले रही है जो सीकर जा रहे हैं, और अगर वो इस तरह के डिस्प्यूट में उनके ऊपर कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या अंग भंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है कि साहब हम आपको इंश्योर भेज रहे हैं यहाँ पे कि आपको मतलब हम इतना कंपनसेट कर रहे हैं ओरिजिन वाइज जून वाइज या जो भी फ्लैग वाइज, कुछ प्रकाश
2: डाले। देखिए प्रेम जी, आपकी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है। ये सी फेयरर्स के बात में बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग रहते हैं या जो लोग पानी के जहाज में बहुत महीने बिताते हैं, घर से दूर रहते हैं। ये बात ठीक है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आजकल थोड़ा सा उसमें रिजर्व है, बहुत हाई रिस्क एक तरह से ये नौकरी बन गई है। तो मुझे लगता है इसमें प्रेम जी जो मैं बात आपको कहना चाहता कि जिस भी वेसल पर ये सी फेयरर्स जाते हैं, और मेरी जानकारी मुझे पता है इस मामले में दुरुस्त है, वो वेसल आपको इंश्योरेंस देता है। आप जब पानी के जहाज पर बहुत दिन तक रहते हैं, एक महीना, 15 दिन, 2 महीने रहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वो शिपिंग लाइन देती है। तो शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस तो आपके पास है ही, और वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 10-20 हजार रुपए का होता है, वो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है। आपकी जो सैलरी होती है उसका वो एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से उतने एक्स टाइम्स वो इंश्योरेंस देते हैं। तो आपकी बात ठीक है कि भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को भी या भारत सरकार को, देखिए जब आप निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी निजी कंपनी में नौकरी आपकी चॉइस से है, आपने स्वयं ऐसा प्रोफेशन चूज किया है। मुझसे सवाल प्राची और निशित पूछा गया एक जगह के भाई इनके लिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा देखिए अब ये तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसी नौकरी जब तक ये सब तरफ युद्ध चल रहा है और तब तक मैं समझता हूं ऐसी नौकरी से अगर बच सके तो बचे, और खासकर ये नहीं तो कम से कम उस रूट पे ना जाएं। आप इधर ट्रैवल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, पर उस रूट पे ना जाएं, पर अब मजबूरी है, अगर जाना ही पड़ता है तो आप अपनी शिपिंग लाइन से बात करिए, वो शिपिंग लाइन से ही आप रिक्वेस्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका इंश्योरेंस बढ़ा दे। बाकी यहां पर आपकी बात दुरुस्त है, अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदा हमारी ये बात सुन रहा है तो मैं उनसे भी आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की तरफ से भी अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया जाए। आपकी सलाह हमने नोट कर ली है, और जब भी कभी मुझे निजी तौर पर मौका मिला मैं इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
0: और दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं, हम अमित की कॉल लेंगे, मगर उससे पहले आइए जयपुर से जुड़े जितेंद्र से। जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: धन्यवाद सर। जैसे आप एफएमसीजी बोलते हैं, एफएमसीजी सेक्टर के लिए दो चार सेक्टर आप बताएं, तो एफएमसीजी में भी जैसे कई तरह का है, जैसे डाइवर्सिफाई एफएमसीजी, पर्सनल प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्या? तो पहला तो प्रश्न ये है, और दूसरा कि एक देश का पहला या दूसरा प्राइवेट बैंक है, उसके भी कुछ शेयर के दाम गिरे हैं, तो मैं उसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहा हूं, तो क्या ठीक है क्या?
2: जितेंद्र जी एफएमसीजी जब हम बोलते हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो आपने जो जिक्र किया कुछ कुछ कंपनियां खाने पीने की चीजों में है, जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, इस प्रकार की चीजें बनाती हैं। अच्छा कुछ ग्रोसरीज में है, शैम्पू, तेल, साबुन वगैरह, इस प्रकार की फेस क्रीम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इन सबको मिला के हम जितेंद्र जी एफएमसीजी बोलते हैं। और इनको फास्ट मूविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मान लीजिए टूथपेस्ट लेकर आए तो टूथपेस्ट आपका क्या हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा, साबुन लेके आए 5-7 दिन 10 दिन चलता है, ऐसे ही खाने का सामान लेके आए, बिस्किट, तो इनकी तो वैसे ही शेल्फ लाइफ होती है। तो हम जब एफएमसीजी जब मैं बोलता हूं तो मैं इन सबको मिला के बोलता हूं। खाने की आपने जो बात करी, खाने की भी हो गई, ये हो गई, मैं दोनों को मिला के बात करता हूं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहता था। दूसरे आपने प्राइवेट बैंक का बोला, प्राइवेट बैंक देखिए यार नाम तो लेते नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन से प्राइवेट बैंक का कह रहे हैं कि जिसके शेयर गिरे या कौन सा हुए। अब ये तो जब तक ये ऐसा सवाल है कि जब तक नाम ना खुले, और नाम हम लेंगे नहीं, ना आप लेंगे ना हम लेंगे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस बैंक के। बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें इस साल तो नतीजे उतने बुरे नहीं रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं मुझे नहीं पता किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ एक के मिले जुले थे, बस ज्यादातर के अच्छे थे। तो ये तो जितेंद्र जी जब तक नाम का राज नहीं खुलेगा, और वो खुलेगा नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इसमें जी।
0: आइए निश्चित अब जुड़ा जाए अमित से, अमित हैं दिल्ली से। अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
4: सरासर प्रश्न है ये है मेरा सर
2: जी।
4: सर अभी जो ओमान और ईरान के बीच जो बात चल रही है हॉर्मोन्स ओपन करने के लिए
2: जी,
4: तो आपको क्या लगता है सर कि ये वार्ता सफल रही है? और दूसरा प्रश्न ये सर कि हाल ही दिनों में कल या परसों अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पर मंजूरी दी है जिसपे उन्होंने ये कहा कि रूस से इंपोर्ट करने वाली जितने कंट्री है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। सर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राइट्स मिल गया तो क्या हम भी रूस से इंपोर्ट करते हैं तेल, तो क्या हम पे भी इस तरह का संकट मंडरा रहा है क्या सर कि 100% टैरिफ लग जाएगा उनको?
2: अमित आपके पहले सवाल का जवाब, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मूस पर कोई समझौता हो जाएगा नहीं, ये तो दिस इज अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन। ये तो हर किसी के मन में और हम सब चाहते हैं कोई ना कोई समझौता हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही शुरू हो। मुझे लगता है मार्केट मंत्रा या कोई भी एक्सपर्ट इस पे टिप्पणी कैसे, इस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप भी स्वयं टिप्पणी नहीं कर पा रहे कंफर्म तौर पे, खुलेगा कि नहीं देखते हैं क्या समझौता होता है। जो आपने दूसरी बात पूछी, इसको हम बाईपार्टिसन ग्रुप है अमेरिका में सेनेट में जिन्होंने ये बिल रखा था, इसको लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान 2025 बिल कहा जा रहा है। जी हां, 86-11 से ये बिल पास हो गया है सेनेट में। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा ये बिल, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा और उसको अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे। 5 देश हैं इसमें, मैं बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि शायद इसका हम जिक्र मार्केट मंत्रा में अलग से भी इसके बारे में आज करेंगे। और इसमें इंडिया है, चाइना है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और अजरबैजान है। इन 5 देश सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलेटरल ट्रेड डील है उस पर लगातार बातचीत बहुत समय से चल रही है, और अगर ये हो जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं इसका अमित, और देखते हैं अगले हफ्ते क्या नतीजा आता है। पर आपका जो अंदेशा है, आपका जो डाउट है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, दुरुस्त है।
5: Yes, Sharad ji, and continuing the story, the US Senate has voted to approve a bill to sanction Russia and key buyers of its petroleum products, such as China and other countries, claiming that such trade helps fuel the Ukraine war. The bill, renamed as Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are the top 5 importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 to till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. Sharad ji, would like to know, you know, with the passing of this bill, of course, you know, the other house has to pass the bill now. But even earlier, we saw a couple of months back as well that President Trump, you know, in all his whims and his fancies, he would impose up to 100% or even more tariffs. So what difference does it make with this bill being passed and the earlier actions of President Trump?
2: Okay, so let's understand this, because the current tariffs which were being agreed with India until now, they were two-tier tariffs. One was the MFN tariffs, the most favored nation, basic 10%. Mm. And on top of then, Section 301B of the US Trade Act 1974, India was subjected to another 10% tariff. This was for forced labor, that India was probably using some raw material for forced labor and so on. So in all, 20%, which wasn't bad for us, although India was protesting that we should not be tariffed because we are using forced labor, because there was no product in India which was going on forced labor. There were some Chinese imports,
5: right,
2: supposedly, which America said, which are using forced labor. So that was still okay. But this 100% would really put us in problem. As I said, there are 5 countries. There's India, there's China, there's Slovakia, Hungary, and Azerbaijan. And you know, out of the total Russian oil, about 50% of the oil is being imported by China. About 37% of the oil with Russia currently imports is being imported by India. For Indian imports, it's about 50%, which is the total 88% oil that we import. 50% is coming from Russia. So I think this will be extremely detrimental, because half of the oil we are importing from there, I hope it doesn't happen. Because and I must clarify to the listeners that this passing of this bill in House of Representatives next week, hopefully, which is being anticipated, this will not impose tariffs on India by default. It gives powers to the President of the United States to impose. So let's see what President Trump decides after this bill is passed. But it's definitely a matter of concern for Indian exporters.
5: All right.
0: श्रोताओं, भू राजनीतिक गतिविधियों पर और भी विस्तार में बातचीत करेंगे। हमारे समक्ष शरद कोहली जी बैठे हुए हैं, आप भी उनसे अपना सवाल ले सकते हैं। मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि सप्ताह के भीतर हमारे प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उम्मीद से

0: के आंकड़ों को पार कर गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए और 21 पैसे पर बंद हुआ। इधर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से विशाल। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: मार्केट में नमस्कार जी, जैसे मैंने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, मगर डिफेंस सेक्टर अभी थोड़ा सुस्त पड़ा है, क्या कारण है और क्या कहते हैं जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला वो कब तक होगा?
2: डिफेंस सेक्टर की आपने बात करी विशाल, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर भारत का एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है, उसमें बहुत ही शेयर्स में आगे ऊपर जाने की संभावना नजर आती है। भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब तो भारत एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस का, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में कंपनी का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। विशाल, थोड़ा सा लंबे वक्त का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। बीच बीच में ये जो फेसेस आते हैं जब बिल्कुल शेयर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उससे जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी होती है कि भाई पैसा लगाया हुआ है, बढ़ तो रहा नहीं, इससे अच्छा तो बैंक में रख देते, बहुत तरीके के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं। तो विशाल, ये लंबे वक्त को रखने की चीज है, इसको रखिए, आप 2 से 5 साल का नजरिया रखिए, ये बहुत बढ़ेगा। दूसरा, आपने कहा ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कब होगा, मुझे लगता है ये तो ऐसा सवाल है कि वो एक पुरानी पिक्चर का वो था, टप्पा को किसने मारा, ये इस टाइप का सवाल मुझे नजर आता है, क्योंकि ये तो सबको, सब सारी दुनिया इस सवाल की तलाश कर रही है कि कब होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझौता दुनिया में शांति लाएगा। तो जैसे आपके दिमाग में सवाल है, और ये हम सभी यहाँ जो बैठे हैं, हम सबके दिमाग में सवाल है, काश हम आपके सवाल का ये जवाब दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो फिर हम तो चाहते हैं कि आज अभी बीते हुए कल में ही हो जाए।
0: बिल्कुल, भिले से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्ते प्राची जी, मार्केट मथुरा टीम को नमस्ते, और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर जी, इनकम टैक्स में यदि किसी का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही अर्निंग है और 1,80,000 रुपए के करीब आता, मतलब 4 लाख से कम है
2: जी,
3: तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना अभी भी मैंडेटरी है कि अब वो ना करके भी कोई दिक्कत नहीं है?
2: रवि जी, अगर खाली इंटरेस्ट इनकम है, और ये देखिए कहता है इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं कटा है, अगर रिफंड है तो फिर तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, वरना रिफंड कैसे आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी इनकम आपने बताया कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो फिर तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे रिफंड कैसे आएगा। और मैं 2-4 चीजें और बता दूं, कुछ लोगों को वैसे ही फाइल करना मैंडेटरी होता है, मान लीजिए आपने 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे, 10 लाख सॉरी क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया है, आपने विदेशी यात्रा करी है, आपका 2 लाख से ज्यादा बिजली का बिल, 1 लाख से ज्यादा साल का बिजली का बिल आया है, तो अब ये सब चीजें भी बता दी गई है, तो ये भी देखनी पड़ती है। पर सबसे ऊपर जो रहता है वो ये है कि आपको अगर रिफंड लेना है रवि जी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मुझे लगता है रिटर्न फाइल करना एक अच्छी बात है, और अगर आपकी कोई इसमें कॉस्ट नहीं आ रही और वो आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल की हुई अक्सर कल को वीजा लेना है, कोई लोन लेना है, आपके काम आ सकती है। पर हाँ, टेक्निकली देखें रिफंड नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बेशक ना भी फाइल करें तो चल जाए।
0: मैम, बीइंग अ सिविलियन ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
2: नहीं, जिम्मेदारी है, पर उसमें प्राचीन का सवाल यहां से आया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे हाँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें जो मैंने बोली ये है, फिर तो जिम्मेवारी है, पर इनका सवाल ये था कि इनमें से कुछ नहीं है, इनका 4 लाख से कम है, तो फिर फाइल करें ना करें, तो तकनीकी जानकारी भी मुझे लगता है हमें देना बनता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ राम किशन जी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो हेलो
2: जी।
4: हाँ, मैं राम किशन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
2: जी राम किशन जी,
4: सीनियर सिटीजन हूँ मैं, तो मेरी इनकम जो है ब्याज से है
2: जी।
4: हाँ, 10-5 हजार वैसे इनकम हो जाती है टोटल
2: जी,
4: तो 3 लाख मेरी है 3,20, तो आयकर रिटर्न भरनी जरूरी है नहीं है?
2: रामकिशन जी, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। रामकिशन जी, बहुत वरिष्ठ नागरिक, आप आवाज से बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बहुत सीनियर लग रहे हैं, हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम, अभी आपसे पहले भी जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है रामकिशन जी, अगर जो आप इनकम बता रहे हैं इसमें तो जरूरी नहीं है, पर ये देख लीजिएगा कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं काट लिया है बैंक ने आपकी जो ब्याज से इनकम है। अगर टैक्स कटा है रामकिशन जी, फिर आपको फाइल करनी जरूरी है, वरना देखिए मैं प्राची निश्चित तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कितने जिम्मेवार हैं, उनको लगता है कि हमारी थोड़ी भी इनकम है, और आयु के इस स्टेज पर वो अभी भी चाहते हैं कि वो कहीं उनसे कोई कंप्लायंस में गलती ना हो जाए, और यू नो दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। रामकिशन जी बिल्कुल, अगर इनकम टीडीएस नहीं कटाया तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, और हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जी।
5: नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी वेलकम।
6: नमस्ते मार्केट मदर, नमस्कार
5: नमस्कार
6: जी।
5: नमस्कार
6: सर, ये जो वी आर इम्पोर्टिंग

0: 55% recent report oil from Russia, crude oil from Russia.
1: Yeah.
0: And also it is well known that a lot of refineries have been devastated in Russia by Ukraine.
1: Yeah.
0: So we are also re-exporting diesel and petrol to DAC.
1: Yeah.
0: So what is the refining margin and who are the beneficiaries, companies? Will there those shares be benefited? Will as investor, ठीक है वो रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं मर रहे हैं वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है है पर नहीं है एक तरह से हमें उसमें क्या बेनिफिट ले सकते हैं क्या प्राइवेट रिफाइनरीज के शेयर्स में अभी कुछ छाल आ सकता है या आएगा या फिर ये जो ट्रंप की नई कहानी बना रहे हैं कि अब वो उस पर भी टैक्स लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावट लगेगी ये रिफाइनिंग मार्जिन आया तो होगा किसको मिला होगा किन कंपनी प्राइवेट कंपनीज को तो क्या उसके शेयर में फायदा है या नहीं है सरकार ने तो शायद से नहीं किया होगा
2: शंकर जी देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज शंकर आई थिंक योर क्वेश्चन एमिनेट्स फ्रॉम द फैक्ट बिकॉज दिस इज अ डबल एज सॉर्ट वेयर इज ऑन वन साइड दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस under recovery from the customers when the crude oil price is high the cost is high and you're not charging as much you know there's under recovery on petrol diesel lpg on the other side yes you're right we are importing from russia for export also so you know it's a double-edged sword so refining margin varies but your question is private companies yes like for example the jamnagar refinery in india is one of the finest refineries and that can also refine the western texas intermediate oil you know which is the harder oil it's not the sweet oil and that is very tough to refine so we are one of the finest refiners in the world and Russia despite being one of the largest producers of oil is because of refineries being damaged it is sending it to India and it had a shortage of petrol and diesel for that matter so refining margin is fairly healthy but the problem is that refining margin comes under pressure because the domestic sale becomes a loss-making proposition. So it's a mixed bag, I would say, Shankar, to answer your question. Whether to invest or not, I would advise that for some time till the matter is settled, it will not be a bad idea to stay away from oil companies for retail investors.
1: Right. And moving on to the U.S. markets, the Wall Street ended higher yesterday as traders interpreted an unexpected decline in the U.S. jobs in July as a sign that the Federal Reserve may not need to raise interest rates soon. And among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 rose 0.6% to settle at a record closing high of 7,700. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. For the week, the Nasdaq surged 5.2% and the S&P 500 soared 3.6% and the Dow climbed 3%. On the economic front, the U.S. Labor Department said non-farm payrolls fell by 23,000 in July, while the unemployment rate edged down to 4.1% in July from 4.2% in June. Sharaji, very briefly, how do you see the interplay of the U.S. Senate bill, which was just passed in the Senate, with the U.S. markets behaving in the coming maybe a week or 10 days' time?
2: Well, U.S. markets have been going gung-ho, if you ask me, over the throughout the war. Mm. And I think this data is a very interesting data because on one side, this is bad that people are not getting jobs, the job data. On the other side, what is taken positive out of this data is that there's going to be no inflation now. Or lower inflation, which means the Fed may not hike the interest rates. So this turns out to be a double-edged kind of an announcement. Overall, I think the American markets see more on the positive side. So we are expecting the market to surge. In fact, you saw the commodity markets rising because of this.
1: Right. Next caller is Virender from Delhi. Virender ji.
3: Namaskar.
1: Namaskar.
3: Coffee to all. Dr. Kohli, मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है
1: जी
3: और अमेरिका जिस दिन से टैरिफ ज्यादा लगा रहा है बदला लेने के लिए या डराने के लिए
1: जी
3: अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रहा ना अमेरिका हमारी जैसी मार्केट को छोड़ करके अगर हम ना भी बेचें तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है जैसे कि हमने कम से कम 40 देशों से हमने एमबीए मतलब एग्रीमेंट कर लिया है और ये हमारे लिए फायदेमंद है डोंट यू थिंक सो
2: बिल्कुल वीरेंद्र जी आपने तो जवाब खुद ही दे दिया मेरे लिए जवाब छोड़ा ही नहीं है बहुत आप जो कह रहे हैं सब पे कॉपी टू ऑल मैं टिक मारता हूं और आपके लिए कॉपी टू ऑल आपने सब बहुत बढ़िया बात कही है और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है इससे उनके देश में महंगाई बढ़ती है टैरिफ आके लगता किस पे खुद पे ही तो लगता है इंपोर्टर्स पे लगता है और अमेरिकी जनता को देना पड़ता है आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वीरेंद्र जी
4: बिल्कुल आगे बढ़ते हैं पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा एक वक्तव्य में पीसीआई ने कहा कि हर भारतीय बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के

0: तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकता है। इसने ये भी बताया कि छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पीसीआई ने कहा कि यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाव और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं। पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट सर्विस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कोई भुगतान करना पड़ेगा। ये किस तरीके से एक भ्रम तोड़ा गया है कि शायद आम ग्राहकों को भी जो है इस पर भुगतान करना पड़ेगा।
1: जी हाँ, लोगों में एक भ्रम फैल रहा था कि शायद हमको देना पड़ेगा 2000 रुपए से ऊपर के, और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ये जो जिस व्यापारी से आप डील कर रहे हैं वो भी बड़ी पेमेंट पे, उनको देना पड़ेगा जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है। तो मुझे लगा है सरकार ने उस भ्रम को क्लियर कर दिया है। हाँ। लोगों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा। और सच बात बताएं, अगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी भी तो सब्सिडाइज हो रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए।
2: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी। एंड बिफोर वी क्लोज आवर रिमाइंडर द हेडलाइंस वंस अगेन, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप्स ओवर 0.5%, द वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद स्ट्रॉन्ग गेन्स बॉयड बाय मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, एंड द यूपीआई ट्रांजैक्शंस टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स एंड स्मॉल मर्चेंट्स, क्लारिफाइज द एपेक्स डिजिटल पेमेंट्स बॉडी पीसीआई, एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फ्रॉम द entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

11:41 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आपके साथ मैं विकास

0: रफ़ी साहब की आवाज़ थी और इस गीत को सुनते सुनते अचानक मैं भी माइक के पीछे अपने आप को सिंगर समझने लगा और इस गीत के साथ गुनगुनाने लगा। कुछ गीतों को हमने हजारों बार सुन लिया हो, सुन सुन कर घिस दिया हो, हमें याद भी हो गया हो वो गीत, लेकिन घिसने के बाद भी उसमें से वो मधुरता, वो सुंदरता, वो खूबसूरती कभी कम नहीं होती। और शायद ये इन गीतों की खूबसूरती है जो इतने सालों बाद भी हमें अपने साथ गुनगुनाने पर मजबूर करती है। प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास, और हमारे और आपके साथ ये प्यारे से गीत।
1: मैंने कहा मिस

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत, और इस गीत से पहले आप तक एक अलग सा गीत पहुंचा था, मिट्टी में सोना इस फिल्म का। और इस गीत को जब सुनते हुए एहसास हुआ कि किस तरह से इन गीतों में इंग्लिश के शब्द हुआ करते थे। बहरहाल घड़ी बता रही है कि अब विकास के जाने का वक्त हो चुका है, इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचेंगे। वे तिरुवन्नामलाई से सड़क मार्ग के जरिए पुदुचेरी पहुंचे और लोक निवास गए, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुदुचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि सोनितपुर, नगांव, गोलाघाट, शिवसागर, होजाई, दरांग, जोरहाट, धेमाजी, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और विश्वनाथ समेत 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है कार्यक्रम पानी पे लिखी कहानी का, एक ऐसी कहानी जो आपके मन के कोने में कहीं घर कर जाए। आज आइए सुनते हैं जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल।
1: तो आइए सुनते हैं ये कहानी हर श्रृंगार के फूल। प्राजक्ता आज दफ्तर के लिए जल्दी निकल पड़ी थी। दफ्तर में जरूरी काम था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने टैक्सी ली, पर वो भी जुलूस में अटक गई।
2: ओहो, कहाँ फंस गई? 10 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है और उससे पहले मुझे दफ्तर पहुंचना जरूरी है। फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आज सीईओ साहब भी आने वाले हैं। ओहो, ये ट्रैफिक का हाल, तंग आ गई मैं। ओहो, और कितनी दूर तक ऐसे ही चलना होगा भैया?
3: अरे मैडम, अभी क्या बोलेगा, ये हर साल का है। इधर जुलूस निकला, उधर ट्रैफिक जाम। ये मंदिर के सामने हर साल आज के दिन मस्त जतरा लगता है। अभी आज के दिन आपको

0: थोड़ा सा झेलना पड़ेगा मैडम, लेकिन टेंशन नहीं लेने का मैडम, अपुन पहुंचा देंगे आपको।
1: हाँ हाँ तुम तो पहुंचा दोगे, लेकिन एक काम करो भैया, आप टैक्सी रोको, मुझे यही उतार दो।
2: यूं ही बैठे बैठे इंतजार में और समय गवाना उसे गवारा न था। वो टैक्सी छोड़कर पैदल ही चल पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो गई। प्राजक्ता प्रेजेंटेशन दे नहीं पाई, सीईओ साहब से डांट पड़ी। सो अलग, कितनी तैयारियां की थी उसने आज के दिन के लिए। पूरे दिन प्राजक्ता का मन उदास रहा, ठीक से लंच भी न ले पाई। शाम को बुझे मन से घर पहुंची तो माँ ने पूछा,
3: अरे बन्नो रानी, तुमने बनारस का टिकट निकाल लिया कि नहीं?
1: ओह माँ, काम में मैं बिल्कुल भूल गई। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ।

दो हफ्ते पहले ही माँ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी। प्रेजेंटेशन के चक्कर में प्राजक्ता टिकट कराना भी भूल गई। उसके जी में आया, कह दे मंदिर तो यहाँ भी है, वहाँ जाना क्या जरूरी है। किंतु माँ की ओर देखा तो कह नहीं पाई, कह देती तो माँ उदास हो जाती। उनकी उदासी प्राजक्ता से देखी नहीं जाती।

ऐसा नहीं है कि ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं है, किंतु आए दिन धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाली इन रैलियों से उसे झुंझलाहट सी होने लगी थी, जिस कारण से बनारस जाना भी उसने टाल दिया था। वो काम तो हो नहीं पाया, अब कम से कम माँ को दर्शन ही करा दूं, ये सोचकर उसने मुंबई वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस के तत्काल के 2 टिकट बुक करा दिए।

होटल ब्रॉडवे में थोड़ी देर आराम करने के बाद सारा शहर घूमते हुए अंधेरा हो चुका था। सड़कों की भीड़ गायब हो चुकी थी। किसी अनजाने शहर में रात का समय भी एक भय का कारण बन जाता है। शाम 4 बजे जिस टैक्सी से प्राजक्ता और उसकी माँ होटल से गंगा घाट गए थे, उसके चालक ने उनकी आपसी बातचीत से भांप लिया कि वे शहरी हैं और यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। चलते समय तो बात हुई थी 200 रुपए में वापस आने की, किंतु शाम तक बातें बनाकर उसने जबरन 1000 रुपए वसूल कर लिए। होटल से घाट की दूरी केवल 2 या 3 किलोमीटर थी, उससे ज्यादा की न थी। गंगा के घाटों और उससे सटे मंदिरों के सारे महत्वपूर्ण स्थल 2 या 5 मिनट की पैदल दूरी के आसपास ही तो स्थित हैं, और सारे दर्शन वो एक बार में पूर्ण कर चुके थे। लौटते समय दशाश्वमेघ घाट पर रुककर अंत में गंगा जी की आरती देखकर वे होटल वापस जाना चाहते थे, किंतु टैक्सी वाला जिद पर अड़ गया कि वो आरती होने तक रुकेगा नहीं। किराया लेकर वो तुरंत निकल जाना चाहता था। वे आज सुबह ही आए थे और कल तो लौटना था, इसलिए माँ इसी समय गंगा की आरती देख लेना चाहती थी। उनका रुकना अनिवार्य था और टैक्सी को जाने की जल्दी थी। प्राजक्ता के लाख कहने पर भी उसने रुकने से साफ इनकार कर दिया। शुरुआत में जो टैक्सी वाला उसे गरीब लग रहा था, वही शाम तक उसे लालची और चालाक लगने लगा। जिसकी दीन दशा पर अब तक उसे दया आ रही थी, उसकी चालाकी देखकर अब उसे अपनी उदारता पर गुस्सा आने लगा। वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी और माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक लगने नहीं देना चाहती थी कि वो तय से दुगनी कीमत वसूल करके उन्हें होटल पहुँचाए बिना देर होने के बहाने चले जाना चाहता है। वो जानती थी कि वो गलत है, फिर भी उसकी गरीबी देखकर उसकी चालाकी पर कुछ भी कहना प्राजक्ता को उचित न लगा। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ टैक्सी से उतरकर गंगा के दर्शन कर प्रणाम करने में व्यस्त थी।

0: रुपए के दो नोट आगे बढ़ा दिए। करारे नोट जेब के हवाले कर टैक्सी वाला टैक्सी मोड़ कर तेजी से निकल गया। उसने आज ही माँ से सुना था,
1: अरे इतिहास से जुड़ा इलाका है, हम तो कह रहे थे कि हम पैदल ही चले जाएंगे, यहाँ तो लोग 2-3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर ही तय कर लेते हैं।
2: अरे माँ, तो ऐसी हालत में तुम्हें क्या मैं पैदल लेकर आती यहाँ पर दर्शन के लिए?
0: प्राजक्ता के दिन भर का निरीक्षण माँ के कहे सत्य को प्रमाणित कर चुका था। ऐसे में टैक्सी वाले को आज 2-3 घंटे की कमाई में ही 1000 रुपए मिल गए थे। इन रुपयों से वह अपने परिवार के न जाने कितने जरूरी काम निपटा लेगा, यही सोचकर ठगे जाने के बाद भी उसने संतोष कर लिया। आरती देखने में काफी समय हो गया था, रात को यहाँ वहाँ घूमकर वे काफी थक भी चुकी थी। अब बस यही इच्छा थी कि जल्दी से कोई टैक्सी मिले और वे होटल पहुँचे। दिन भर तो कई टैक्सी और रिक्शा यहाँ वहाँ खाली बैठे दिखते रहते, किंतु इस समय तो इनका जैसे अकाल ही पड़ गया था। अंधेरा बढ़ने के साथ सड़कों पर भीड़ भी कम होती जा रही थी। एक दो रिक्शे वाले दिखे तो, लेकिन वे होटल तक चलने को तैयार भी न हुए। अब तो स्थिति ये थी कि यदि कोई चलने को तैयार भी हो जाए तो वो उस पर विश्वास भी कितना करे। चिंता, डर, आशंका और माँ की डांट के आगे मौन रहकर रिक्शा खोजने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो मन ही मन भगवान को मनाने लगी। बाबा विश्वनाथ की भूमि पर उन्हीं से सुरक्षा और सहयोग की प्रार्थना करने लगी। तभी पीछे से लगभग 70 की उम्र का एक बूढ़ा धीरे धीरे रिक्शा खींचता हुआ उनके पास आया। उसकी उम्र और उसकी दशा देखकर प्राजक्ता ने उसे अनदेखा करने की भरसक कोशिश भी की, पर शायद उसने दूर से ही उन्हें रिक्शा रुकवाते हुए देख लिया था। उसके पास आकर पूछा,
3: कहाँ जाओगी बेटी?
0: प्राजक्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वे दो लोग और वो बूढ़ा। उत्तर में देरी होते देख उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया,
3: अरे बताओ बेटा कहाँ जाओगी?
0: उसे लगा कि शायद इसे पैसों की जरूरत है, तभी तो जब अधिकांश रिक्शे वाले घर जा चुके हैं वो अभी भी अकेला सवारी की तलाश में रिक्शा लिए सड़क पर घूम रहा है। प्रत्युत्तर के लिए वो देर तक उनकी ओर देखता रहा। बड़े संकोच से प्राजक्ता ने कहा,
2: होटल ब्रॉडवे।
0: उसने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया,
3: ठीक है तो बैठ जाइए, छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं 20 रुपए दे देना।
2: अरे नहीं नहीं बाबा, हमें रिक्शे की जरूरत नहीं है बाबा।
3: अरे बैठ जाओ बिट्टी, अब पैदल कहाँ जाओगी, आज अजनबी शहर है, जहाँ कहोगी छोड़ दूंगा। मैं तो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुँचाने का ही काम करता हूँ।
2: क्या?
3: अरे तुम बैठोगी तो इस गरीब को एक बखत का खाने का दाना मिल जाएगा बेटा, 2 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं गया पेट में बेटा।
2: अच्छा ठीक है,
3: बोलो कहाँ छोड़ दूँ तुमको?
2: होटल ब्रॉडवे चलना है बाबा।
3: अरे तो बिल्कुल छोड़ देंगे बेटा, बिल्कुल छोड़ देंगे। बैठिए, अब बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए बहन जी, आप भी बैठिए, ज्यादा नहीं 20 रुपया दे देना बस, बहुत है।
2: क्या 20 रुपए?
0: प्राजक्ता का अंदाजा सही था, उस गरीब के लिए उस समय 20 रुपए भी रात के भोजन के लिए पर्याप्त थे। डूबते को तिनके का सहारा, एक पल को लगा जैसे नियति ने उन्हें एक दूसरे की सहायता के लिए ही भेज दिया है। वे रिक्शे पर बैठ गए और धीमी गति से रिक्शा खींचता वो चल पड़ा। प्राजक्ता ने मन ही मन भगवान से पूछा,
2: हे बाबा विश्वनाथ, तेरी

प्राजक्ता मुंबई से अपनी माँ के साथ पहली बार वाराणसी आई थी। उसके लिए यहाँ सब कुछ नया था। उसने बचपन से ही बनारस के घाटों का बड़ा नाम सुना था। मन ही मन बनारस की छवि उसके कच्चे मानस पर रच बस गई थी। चलते समय उसके मन में भी बाबा विश्वनाथ की काशी को देखने का बड़ा कौतूहल था। मन में श्रद्धा और जिज्ञासा लिए माँ के कहने पर उन्हें साथ लेकर वह वाराणसी आई थी।

0: लाखों भक्तगण शिव के नाम पर दक्षिण पश्चिम पूरे भारत सहित देश विदेश के कोने कोने से भगवान की कृपा पाने के लिए आस लिए चले आते हैं। आंखों देखे इस यथार्थ से अचंभित सारी बातों का चिंतन मनन करती हुई वो सामान्य रूप से गतिशील उस रिक्शे वाले के पैरों की ओर देखती रही। वो बड़ी मेहनत से संभल कर पैडल मारता हुआ रिक्शा चला रहा था। होटल पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर सेवा पूर्ण कर देने की मुद्रा में वो विनीत भाव से खड़ा हो गया। उसने प्राजक्ता से कहा,
1: ला बिट्टी आ गया। यहीं थोड़ी दूर रहता हूँ बिट्टी, यदि कल कहीं जाना हो ना तो बता देना, बुनचारे सवेरे सवेरे आ जाऊंगा।
2: बाबा, ऐसे तो हम सारा बनारस घूम चुके हैं, लेकिन माँ की बड़ी इच्छा है कि एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। तो एक काम करना बाबा, तुम 7:30 बजे फिर से सुबह आ जाना, ठीक है?
1: बिटिया, हम बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता ना करो। हाँ, अच्छा चलते।
0: अगली सुबह 7:30 बजे चाय नाश्ता निपटाकर वे कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि फोन की घंटी बजी। फोन रिसेप्शन से था। मैनेजर ने प्राजक्ता से पूछा,
3: मैडम आपने किसी भोले बाबा को बुलाया था क्या?
2: भोले बाबा? नहीं नहीं, हमने किसी भोले बाबा को नहीं बुलाया।
3: अरे मैडम, भोले बाबा वो रिक्शे वाला का नाम है।
2: हाँ, रिक्शे वाला बाबा बुलाया था, हम तैयार है, बस निकलने वाले हैं।
3: देखिए मैडम, वो तो सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर आकर बैठा है।
2: अच्छा, हम बस तैयार हैं, अभी निकलने ही वाले हैं।
0: इस समय 7:35 हो रहे थे और वो पिछले 1 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि प्राजक्ता ने तो उसे 7:30 बजे आने को कहा था। बाहर निकलकर उसने रिक्शे वाले से पूछा,
2: बाबा मैंने आपको 7:30 बजे आने के लिए कहा था, फिर आप 6:30 बजे ही क्यों आ गए?
0: वो बड़ी सहजता से बोला,
1: अरे बिट्टी, हमारे पास कोई घड़ी तो है नहीं और न पढ़े लिखे हैं, अब क्या पता क्या समय हुआ है। सूरज देवता को देख के टाइम का अंदाजा लगा लेते हैं, है? अब हमने सोचा कहीं देर ना हो जाए तो सूरज उगते ही यहाँ पहुँच गए। अब कोई बात नहीं, हमारी चिंता न करो।
0: दिन के उजाले में उसके चेहरे और हाथ की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। ऊंचा कद, दुबला शरीर, गहरी छोटी आँखें, धूप में झुलसी हुई काली चमड़ी और ये माथे पर तिलक की जगह कैसा निशान है।
2: अच्छा बाबा, आपका नाम भोले बाबा है?
1: भोले बाबा कह लो, कोई कुछ भी कहता रहता है, गरीब का कोई नाम नहीं होता है बिट्टी, गरीब तो ये आदमी होता है, ये आदमी, ये रिक्शा वाला, बस।
0: जगह जगह सिला हुआ कुर्ता, मैली सी धोती, पैरों में टूटी हुई चप्पल, साथ में पुरानी सी रिक्शा और उखड़े हुए किनारे। उसका और उसके रिक्शे का मुआयना कर उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में भी वही सवाल था, क्या इस रिक्शे

0: में बैठना ठीक रहेगा? बूढ़ा गरीब ही नहीं, अत्यंत दरिद्र भी था। उसने हाथ के इशारे से बताया कि यही कुछ दूर पर मेरा घर है। उसके इंगित दिशा की ओर उन्होंने देखा तो होटल से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे पर एक टूटा हुआ झोंपड़ा दिखाई पड़ा। झोंपड़े के आसपास हर सिंगार का एक पेड़ था। इतना सब देखने और जानने के बाद ना कहने का तो कोई कारण ही नहीं था। प्राजक्ता ने संभाल कर माँ को रिक्शे पर चढ़ाया। सीट के किनारे की टिन जगह जगह से उखड़ी हुई थी। चढ़ते समय कपड़ों के किनारों के फंसने और फटने के डर से वो भी बहुत संभल कर बैठी। इस बीच वो रिक्शे को कस कर पकड़ा रहा। अपने रिक्शे की स्थिति को वो उनसे बेहतर जानता था। उनके बैठ जाने के बाद रिक्शे वाले ने रिक्शे के हैंडल पर टंगा हुआ अपना गमछा निकाला और बड़े धैर्य से गमछे की गांठ को खोलकर उसे प्राजक्ता की ओर बढ़ा दिया। प्राजक्ता ने चौंककर पूछा,
1: ये क्या है और मुझे क्यों दे रहे हैं आप?
0: गमछे में हर सिंगार के ढेर सारे ताजे और खुशबूदार फूल थे। उसके इस व्यवहार से प्राजक्ता को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उन फूलों को लेने से इनकार कर दिया। उसके इनकार पर वो थोड़ा दुखी होकर बोला,
2: बिट्टी ये फूल आज ही सुबह तोड़े हैं। आप बाबा के धाम जा रही हो तो मेरी ओर से इन फूलों को शिव जी के चरणों में चढ़ा देना बिट्टी।
1: क्या?
2: नहीं नहीं, गलत नहीं समझो, गलत नहीं समझो। मैं समय पर नहा धो नहीं पाता ना बेटा। अब कभी नहा धो भी लूं तो पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है। यही एक जोड़ी कपड़ा है, यही धोता हूँ यही पहनता हूँ। अब कभी नहाता हूँ तो कभी कपड़ा धोता हूँ। बस जब भी कभी कोई सवारी लेकर धाम में आता हूँ ना, तो बस दूर मुखदार से हाथ जोड़कर माथा टेक लेता हूँ। आपने कहा था कि आज सुबह बाबा के दर्शन के लिए जाएंगी, इसीलिए सवेरे जल्दी उठकर ताजे फूल तोड़कर लाया हूँ। हाँ, इन्हें मेरी तरफ से उनके दरबार में चढ़ा देना, मेरी हाजिरी लग जाएगी बिट्टी। हाँ, अरे मेरे भक्ति भाव के ये पुष्प उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। बस न जाने कभी कृपा हो जाए मेरे ऊपर भी। है वो तो काशी के नाथ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हीं की कृपा से रोजी रोटी मिल रही है बेटा। बस मना मत करो बेटा, ले लो ले लो।
0: बूढ़ा शिवजी की अदृश्य कृपा पर पूर्ण रूप से कृतज्ञ था और आभार में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता था। उसकी इस दयनीय दशा को देखने और अब तक की बातें सुनने के बाद प्राजक्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे आगे कुछ कहे या पूछे।
1: हाँ बाबा बिल्कुल, लाइए दीजिए ना, मैं इन्हें संभाल के रख लेती हूँ।
0: प्राजक्ता ने एक पन्नी में सारे फूल समेट कर पर्स में रख लिए। बूढ़ा गंभीर मुद्रा में रिक्शे पर बैठ कर पैडल चलाने लगा। वो सड़क के उस पार पहुँचे ही थे कि उनकी रिक्शा में कुछ खट की आवाज आई और रिक्शा रुक गया। उसने पूछा,
1: अरे क्या हुआ बाबा, ये आवाज कैसी थी?
2: कुछ नहीं बिट्टी, कुछ नहीं, चेन उतर जाती है। अब अभी अभी ठीक किए देता हूँ, अभी ठीक किए देता हूँ, देर नहीं होगी।
0: दो मिनट में कुछ ठीक कर वो पूर्ववत रिक्शा चलाने लगा। विश्वनाथ गली तक पहुँचने में यही क्रम दो तीन बार चलता रहा। वो जानता था कि उसके रिक्शे का मर्ज क्या है, किंतु वो उसका इलाज कराने में असमर्थ था, इसलिए खुद ही कुछ काम चलाऊ उपाय करके आगे बढ़ता जाता। मुख्य मंदिर मार्ग पर पहुंचकर वो एक किनारे रिक्शा लेकर खड़ा हो गया। प्राजक्ता ने उसे 500 रुपए देने की कोशिश की, किंतु उस संतोषी जीव के लिए कल के दिए 50 रुपए ही बहुत थे, इसलिए उसने आज कुछ भी लेने से इनकार कर लिया। प्राजक्ता चाहती थी कि वो उन रुपयों को ले ले, और वो था कि मेहनत से अधिक कुछ भी लेने के लिए तैयार न था। कुछ पल ठहर कर उसने कहा,
1: ले लीजिए न बाबा, इनकार ना कीजिए।
2: अरे बिट्टी, जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक क्यों किसी के आगे हाथ फैलाओ।
1: अच्छा भोले बाबा, मत फैलाओ हाथ, पर बताओ अगर आपकी बेटी देती तो आप ना लेते? बिट्टी भी कहते हो और लेते भी नहीं।
2: अरे बिट्टी, बेटिया तो तुम हो ही मेरी, इसीलिए तो मैं आया हूँ।
1: क्या मतलब?
2: मेरा मतलब है कि तुम भगवान के दर्शन करने जाओ। हा? जाओ जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, पट खुलने वाले हैं।
0: मुख्य द्वार से प्रवेश कर भीतर आंगन के उस पार मुख्य मंदिर में प्रवेश किया तो पाया कि पट अभी खुला ही नहीं है। कल जिस माली ने उससे फूलों की

बड़ी माला लाने को कहा था, वो अभी तक नहीं आया था। समय हो चुका था, वो आता ही होगा, ये सोचकर प्राजक्ता भीतर पट के ठीक सामने बैठ गई। जो भक्त पहले से पहुँचे थे वे आँख मूंद कर संकीर्तन

वे भी आंख मूंद कर कीर्तन का आनंद लेने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में प्राजक्ता बाहर आंगन की ओर देखती, किंतु फूल लेकर अभी भी प्रमुख माली नहीं पहुंचा था। मंदिर का पट खुलने ही वाला था। कल उसने कहा था कि पट खुलने से पहले ही पहुंच जाता है, किंतु आज कोई अता पता न था। वो मंदिर का इकलौता माली था। उसके न आने से सारे भक्तगण खाली हाथ ही दर्शन को विवश हो गए।

भीड़ इतनी हो चुकी थी कि आंगन की ओर देख पाना मुश्किल हो गया था। वे दोनों बहुत आगे पट के बिल्कुल ठीक सामने बैठे थे। पट खुला, बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगने लगे। आरती शुरू होकर अपनी गरिमा के साथ चलती हुई खत्म हो गई। जय घोष होने लगे। उसने आसपास देखा, किसी के हाथ में फूल माला नहीं थी। ये स्पष्ट था कि माली अब भी नहीं आया है। उस दिन आरती के बाद श्री काशीनाथ को फूलों की कोई माला न पड़ पाई। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि आज लौटते समय मैं प्रभु को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाई।

कहाँ तो सोचा था चलने से पहले बेला गुलाब की एक बड़ी सी माला चढ़ाऊंगी और यहाँ तो आज अर्पण के लिए एक फूल तक नसीब नहीं। इस विषय में सोचते ही उसे उस बूढ़े के दिए हुए हर सिंगार के फूल याद आए। उसने पर्स में से रुमाल में लिपटे हुए फूल निकालकर अंजूरी भरकर हर सिंगार के ताजे फूल शिवलिंग पर बिखेर दिए। कुछ पंडित जी को दे दिए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें शिव जी को अर्पित कर दिया। उस दिन श्री काशीनाथ को अपने उसी भक्त के फूल स्वीकार कर

में थे, जो अपने आप को हर कहीं से दीनहीन मानता था, जो मंदिर में भीतर प्रवेश न कर बाहर से ही शीश झुकाकर अपने मालिक को प्रणाम कर लिया करता था। प्रसाद लेकर वे बाहर निकले, माली अब भी नहीं आया था।

प्राजक्ता जान गई थी कि आज माली नहीं आएगा, क्योंकि आज शिवजी पूर्ण रूप से पवित्र हृदय वाले उस बूढ़े के भावों के भूखे थे। वो यही सोचकर गदगद थी कि इस नेक कार्य के लिए बाबा विश्वनाथ ने मुझे चुना। उस दिन मंदिर में वो जो कुछ घटित हुआ उसे प्राजक्ता और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं जान पाया।

0: उन अदृश्य भावों और संवादों को महसूस करके वो रोती जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर आकर देखा तो बूढ़ा वहाँ नहीं था। गली के किनारे खड़े उस रिक्शे की ओर इशारा करके उसने बगल की दुकान से सटे बेंच पर बैठे लोगों से उस बूढ़े के विषय में पूछा तो उन लोगों ने कहा,
1: नहीं मैडम, हमने तो किसी रिक्शे वाले को नहीं देखा, किसी बूढ़े को नहीं देखा।
2: ये क्या कह रहे हैं आप, उसका रिक्शा तो यही खड़ा है, फिर आपने कैसे नहीं देखा उन्हें?
1: मैडम जी सही कह रहा हूँ, हम इधर ही रहता हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और कोई रिक्शा वाला आपको छोड़ गया होगा मैडम जी।
2: ऐसा कैसे हो सकता है, और कोई रिक्शे वाला?
0: वो समझ चुकी थी कि दुकानदार से तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। काशी नगरी में जहाँ संत कबीर दास जी ने घट घट में भगवान के बसे होने का ज्ञान दिया था, वही पाठ वो बूढ़ा आज प्राजक्ता को पढ़ा के गया था।

कैसी लगी आपको आज की कहानी, पानी पे लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। हमें दे इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जो दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुद्दीचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुद्दीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरी मेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुद्दीचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कर्ल प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार पुद्दीचेरी पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओतारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को और बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण

ली है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज तुम्हें देखना कैसा होता है। एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11:50। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज के साथ।

वैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं सारे काम छोड़कर आप ही से बातें कर रही हूँ, और अगर आप किसी काम में लगे हैं तो ये फिर मेरे साथ नाइंसाफी होगी। जल्दी से जुड़िए मेरे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपने सुना दिल एक मंदिर फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने और लिखा था बलदेव राज ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने। फिल्म का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन साहब ने और इस फिल्म के सभी गाने हिट थे। अगला गीत अभी के लिए आशा जी की आवाज़ में।

वैसे मैं अपने कंगन की बात करूं तो वो इसलिए खनक रहा है क्योंकि सावन का महीना है और इस सावन के महीने में चूड़ियों के साथ साथ दिल भी खनकता है। गीत आप सुन रहे थे आशा जी और गीता दत्त की आवाज में और फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। संगीत SG बर्मन साहब का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने और इस फिल्म को लिखा था नवेंदु घोष और व्रजेंद्र गौड़ ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, सुनील दत्त, नासिर हुसैन, विपिन गुप्ता, मदनपुरी ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे जो आज भी सदा बहार हैं शैलेंद्र साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में

लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम दो आंखें बारहा हाथ, संगीत था वसंत देसाई का और गीतकार थे भरत व्यास। ये फिल्म आई थी 1957 में और ये इस फिल्म का निर्देशन किया था वी शांताराम ने और इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। अगला गीत लता मंगेशकर, अगला गीत आप तक सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, तुमको देखा तो फिर उसको ना देखा गया, वो कहता रह गया।

मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ। स्वदेश मतलब एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:39 और 48 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ पे।

कुसूर तो कुछ भी नहीं है, या तो किसी का दिल लिया होगा या फिर किसी को दिल दिया होगा। और इसकी सजा पता है क्या होती है? ताउम्र उन्हीं दी रातें। गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मिस मैरी और संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म का को निर्देशित किया था एलवी प्रसाद ने। मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, किशोर कुमार और जैमिनी गणेशन ने। अगला गीत फिर से एक जादू भरी आवाज़ में लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ। अगला गीत अभी के लिए

ये मसला ही तो हल नहीं होता कि मोहब्बत कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, वरना ज़माने में मोहब्बत को समझने के लिए किताबों की कमी कहाँ है। हम सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत जीते हैं, महसूस करते हैं और चले जाते हैं। हम सिर्फ अपने हिस्से का मोहब्बत जोड़ पाते हैं, लेकिन वो पूरी जो एक कहते हैं मुकम्मल परिभाषा है वो अलिखित ही रह जाती है, महसूस किए बिना ही रह जाती है। गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। ये फिल्म आई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्माण किया था एस ए बागर ने और लिखा था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। अगला गीत आयशा जी और रफी साहब की आवाज़ में आप ही के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जीडी वेंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे और जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सिल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज आबिद जान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओत्तारा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की और अफ्रीका के साथ मजबूत एवं गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोटे डी आइवर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं नहीं जानती कैसे ले जाऊं उस तक जमा की हुई ये बारिश, मैं नहीं जानती कैसे ले जाऊं उस तक जमा की हुई ये बारिश, हालांकि जानता वो भी नहीं कि कैसे जाती है बारिश एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हम दोनों ने कर ली है पार वो पहली सीढ़ी जिसे दुनिया असंभव कहती है। सौदेश प्लव 1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सावन का महीना है तो बातों की बारिश और गीतों की बारिश दोनों आप पर जरूर होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। कभी कभी जब मैं ऐसे गाने सुनती हूँ ना तो सीधा मुझे ऐसा लगता है कि मैं गांव की मिट्टी में पहुँच गई हूँ। खेत हैं, खलियान हैं, बारिश है और वहाँ कोई रुकावट नहीं है। फिर मुझे अपना शहरीपन एक बेमानी सा लगता है। आप मेरे खास हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी ना मैं शहरी लिबास में और शहरी भाषा में खुद को एक बहरूपियन सी लगती हूँ। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

अगर आपकी जिंदगी में भी किसी शहरी बाबू ने या लहरी बाबू ने आपकी नींदें उड़ा रखी है तो फिर नाचना तो बनता है। दिल एक है, जिंदगी एक है और प्यार का मौका भी एक है, तो फिर सोचना कैसा। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में आप ही के लिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि गाना आप ही की पसंद का।

वैसे ये बात तो सच है कि जब प्यार का जादू छाता है तो फिर सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक तरफ गानों का जादू है और दूसरी तरफ सावन का जादू है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बचना बचाना तो छोड़िए, संभलना भी मुश्किल हो जाता है, है ना। जब सावन का जिक्र छिड़ा है, बारिश का जिक्र छिड़ा है, तो क्यों ना बारिश के गाने सुन लिए जाए, दो गाने बैक टू बैक अभी के लिए।

तुम्हारी खिड़कियों से जब पर्दा हटेगा, तुम्हारी खिड़कियों से जब पर्दा हटेगा, मोहल्ले की कारों पर तुम्हें एक नाम दिखेगा। हमारे तुम्हारे बीच के जब बादल छटेंगे, प्रीत की धुन में बह उठेंगी कल कल करती नदियाँ। मेरे सीने पर तुम फहराओगी अपनी उंगलियाँ, तुम देखोगी मुट्ठी भर रेत जमा है मेरे सीने पर, जिस पर लिखा है तुम्हारा नाम। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 47 सेकंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

वैसे ये बात तो सच है कि प्यार में आवाज़ ऊंची आवाज़ में दावे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर सामने वाला अनाड़ी हो तो उसे तो प्यार का टेबल समझाना ही पड़ेगा ना, कि मन रात में बहका बहका क्यों होता है, क्यों चांद सितारों में हमें महबूब नजर आता है ना। अगला गीत आप ही के लिए।

दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

रात शुरू में ही मैं आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुक, मुझे यानी अपनी रात की हम सफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष RSelvam ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima.

अजनबी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे यादों की बारात फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत से मकाम हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे किसी से कम नहीं होते।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में।

दोस्तों एक बार गीतों को लेकर फिर से स्वागत है आपका आपकी दोस्त वंदना चुग के साथ कार्यक्रम हमराही के अंतर्गत।

बुनियाद फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, आपका कोई इंतजार बेकरारी से कर रहा हो तो कितना अच्छा लगता है, और इंतजार तो प्यार करने वाले ही करते हैं।

एतबार फिल्म से अभी आपने गीत सुना आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में, शब्द रचना हसन कमल की थी और संगीत बप्पी लहरी का। अगला गीत आप सुनेंगे शगुन फिल्म से, सुमन कल्याणपुरा और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। गीत के बोल तैयार किए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत से संवारा है खयाम ने।

बंगला की तीन देवियां फिल्म से आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने।

फिर वही दिल लाया हूँ। फिल्म से गीत था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है लाट साहब फिल्म से, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत से शब्द रचना शंकर जयकिशन की है और संगीत से सवारा है वो बाद में बताएंगे।

मैंने आपसे कहा था कि मैं इस फिल्म में शब्द रचना बताऊंगी और आपको बता दी थी संगीत बताना था. शब्द रचना शंकर जयकिशन की थी और संगीत से संवारा था शैलेंद्र ने. और अब अगला गीत आप सुनेंगे रात और दिन फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ है. शैलेंद्र ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन की संगीत से संवारा है.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा, हमने भारत अमरीका के बीच व्यापारिक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष R. सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। बताया गया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कल वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। आज बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को दिल्ली NCR के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Behwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance late last night. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. Vice President C.P. Radhakrishnan will today participate in the Har Ghar Tiranga campaign and hoist the national flag at Flag Point in Sri Vijayapuram. The Vice President yesterday arrived at Sri Vijayapuram on a two-day visit to the Andaman and Nicobar Islands. On his arrival at INS Utkrosh, the Vice President was accorded a ceremonial reception and guard of honour. Mr. Radhakrishnan visited the National Memorial Cellular Jail and paid floral tributes at the Martyrs Column and offered his respects at the Swatantrata Jyoti. He also visited the cell of Veer Savarkar and other important sections of the historic cellular jail, including the Central Tower, Workshed, Gallows and the Museum Exhibition Gallery. The deadlock over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations in Jharkhand now appears to be moving towards a resolution. The Jharkhand government will hold next round of talks with students protesting the alleged exam irregularities in the state today. The talks will be held around 12 p.m., a member of the government panel said. After the panel held meeting with Chief Minister Hemant Soren, apprising him about the progress achieved during the dialogue with the protesters. The high-level talks between the state government and different groups of protesting students was held yesterday at the state guest house in Ranchi in a positive atmosphere. To ensure greater transparency, the government has also issued an official feedback email ID through which students and all stakeholders can submit their suggestions. In Jammu and Kashmir, Shri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both Baltal and Pehelgam routes from August 9 in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. He said adverse weather conditions have also been forecast by the India Meteorological Department over the next few days. The United States is reviewing a proposal to eliminate the 60-day grace period that allows certain foreign workers on non-immigrant visas to find new employment after losing their jobs. If implemented, the move could require affected workers to leave the country immediately after their employment ends. The proposal from the Department of Homeland Security is currently under review at the Federal Office of Management and Budget. Further details of the proposal are not immediately known. The 60-day grace period was introduced in 2017 to allow foreign workers and their dependents to stay in the US while searching for new employment after a job loss. Indian shuttler Ashmita Chaileha will take on China's Qiu Han in the women's singles final of the Korea Masters badminton tournament in Asan today morning. And that is the end of this news bulletin.

0: प्यार हमसे।
1: अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार का गाया हुआ, गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा आर डी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे अनपढ़ फिल्म।

से लता मंगेशकर की आवाज में है। गीत रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन का। दोस्तों, बहुत ही कम लोग दुनिया में होते हैं जो अपना प्यार किसी के प्रति बनाए रखते हैं, और वो खुशनसीब लोग होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार के काबिल होते हैं।

0: दोस्तों, बहुत बार बहुत सी चीज़ें हमें उम्मीद से ज़्यादा मिल जाती हैं और फिर हमें लगता है कि शायद हम इसके काबिल थे। हम तो चाहते हैं कि आपके सपने भी ऐसे पूरे होते रहें और आपको उम्मीद से ज़्यादा मिले।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक

नाइट फिल्म से गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने.

यकीन फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे गूंज उठी शहनाई फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ, भरत व्यास के बोल हैं और संगीत वसंत देसाई का।

और एक छोटा सा अंतराल। दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीत चल रहे हैं और गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

बहुत बार आप कई लोगों से मिलते हैं तो आप सोच कर ये फील करने लगते हैं कि उनका मिलना आपकी जिंदगी में बहार ला रहा है और अच्छा भी साबित हो रहा है। स्वीकार किया मैंने फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नीता फाजली की रचना थी और उषा खन्ना का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे कर्तव्य फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ। वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत।

दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा इंतज़ार ही करते रहते हैं, और इंतज़ार करने वाले जिनकी इंतज़ार होती है वो नहीं आते। और अब अगला गीत बड़े दिल वाला फिल्म से आप सुनेंगे, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत आर डी बर्मन का।

दोस्तों, अब करुणा कार्यक्रम में, अरुणिमा कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे आखिरी रचना हाथ की सफाई फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया गीत है, गुलशन बावरा की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। बहुत बार हम एक दूसरे से वादा कर बैठते हैं कि हम ज़रूर निभाएंगे, लेकिन कारणवश अगर नहीं निभा पाते या परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वादा वही करें जो निभा सकें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं और जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विन से कल फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि हमने भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय संवाद की लगातार बनी हुई गति पर संतोष व्यक्त किया और व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में

0: कोटेडी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटेडी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और कोटेडी आइवर की लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल के कैलाशनाथन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनका स्वागत पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम ने किया। श्री शाह आज सुबह गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। इससे पहले सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्रियों ने कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 147,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए गए हैं, जिनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने बताया कि बारिश के कारण यात्रा मार्गों के संवेदनशील हिस्सों की मरम्मत और रखरखाव आवश्यक हो गया है, जिसका काम सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi yesterday, Mr. Modi urged the students to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi received a phone call from US Vice President J.D. Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. They noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Mr. Modi congratulated Mr. Vance and the Second Lady Usha on the birth of their son and conveyed best wishes to the entire family. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged as a true people's movement that inspires citizens across regions and communities to celebrate the tricolour as a symbol of India's unity, honour and collective national identity. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the Har Ghar Tiranga campaign and hoist the national flag at Flag Point in Sri Vijayapuram today. The Vice President yesterday arrived at Sri Vijayapuram on a two-day visit to the Andaman and Nicobar Islands. Union Home Minister Amit Shah will today participate in the presentation ceremony of the President's Police Colour. At the ceremony organised by the Puducherry Police, the Home Minister will hand over the ceremonial flag to the force, marking the conferment of the prestigious award. In the afternoon, Union Home Minister will also flag off a Har Ghar Tiranga rally at Muruga Theatre Signal in Puducherry. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh called on President of Cote d'Ivoire Alassane Ouattara in Abidjan yesterday. He discussed the growing India-Cote d'Ivoire partnership and reaffirmed India's shared commitment to advancing Prime Minister Narendra Modi's vision of stronger and deeper engagement with Africa. In Jammu and Kashmir, Shri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both Baltal and Pahalgam routes from today, in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. He said adverse weather conditions have also been forecast by the India Meteorological Department over the next few days. Indian shuttler Ashmita Chaliha will take on China's Qiu Han in the women's singles final of the Korea Masters Badminton Tournament in Asan this morning. Ashmita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final yesterday, while Han outplayed South Korea's Ji Kim 22-20, 18-21, 21-14 in the other semi-final. And that is the end of this news bulletin.

राधा का भी श्याम बोलो, मीरा का भी श्याम, ये तो प्रेम की बात है और हर किसी का प्रेम अद्भुत और अनोखा है। गीत गाता चल फिल्म से ये रचना आपने सुनी आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगली रचना आप सुनेंगे कोहिनूर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी की रचना है और नौशाद का संगीत।

दोस्तों, इस संसार में सत्य ही जीवन है, जिसके आधार पर पूरा संसार टिका हुआ है।